0: तनु माया गुण को पार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री अयोध्या राम जी लला की जय। श्री पवन सुत हनुमान की
1: जय।
0: उमापति महादेव की
1: जय।
0: श्री रमापति रामचंद्र की
1: जय।
0: श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की
1: जय।
0: बोलो भाई सब संत।

भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां दर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं श्रीसीतारामनां महाराज की संत बड़े परमार्थी भेष धरे यमदूत राम नाम की गर्जना भाग जाए यमदूत श्री सीताराम।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालतल के मार्ग पर आप हमें FM बालतल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस एवं आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, यात्रा के दौरान पवित्र गुफा तक के सफर में आपको प्राकृति की सुंदरता और शिव भक्तों के भीड़ के साथ चलते चलते आपका मन जो है प्रसन्न रहता है। नई फूर्ति, नई ऊर्जा और तनाव से आपको मुक्ति मिलती है। आप में सकारात्मकता आती है। ईश्वर से यही प्रार्थना, आपकी ये पूरी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है। आप बने रहिए आकाशवाणी के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतली 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस एवं आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोता, आपको बताते चले, आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का चौथा जत्था वादी की ओर रवाना किया गया। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से इस जत्थे को जो है कुल 291 छोटे बड़े वाहनों में वादी की ओर रवाना किया गया, जिनकी कुल संख्या 4576 है, जिनमें 1310 महिलाएं, 22 बच्चे, 572 साधु, 154 साध्वी शामिल है। इन तीर्थ यात्रियों में बालतल के मार्ग से 1661 यात्रियों को जो है पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा। 2915 तीर्थ यात्रियों को जो है पहलगाम के प्राचीन मार्ग से बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त होंगे। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण के संग।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, DTH की आराधना सर्विस एवं आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोता, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर भगवती नगर बेस कैंप से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं। जावेद, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से मैं आपके लिए जो जरूरी यात्रा के प्रति जो इंफॉर्मेशन है वो अभी तक की ये है कि पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा के आज चौथे दिन पहले हफ्ते में ही जम्मू शहर पूरी तरह शिवमय हो गया है। भगवती नगर यात्री निवास, तवी रिवर फ्रंट, श्री राम मंदिर स्थान और पंजीकरण केंद्रों पर शनिवार को दिन भर जहाँ पूजा अर्चनाएं भी होती रही, वहीं श्रद्धालु अपना पंजीकरण की प्रक्रियाएं भी पूरी करते नजर आए। तो पूरी तरह से, हालांकि पिछले तीन दिनों से जम्मू के मैदानों में चिलचिलाती धूप, उमस और गर्मी के दौरान श्रद्धालु पंजीकरण की औपचारिकताओं को पूरी करने के बाद कई जगहों पर श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते भी नजर आए। ये नजारा इन डिफरेंट पंजीकरण सेंटर्स पर देखा जा सकता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि पिछले तीन दिनों से, जैसा कि मैंने कहा, कि चिलचिलाती धूप और बहुत तेज गर्मी भी है, लेकिन जो भक्ति का जो जज्बा है, जो वलवला है, जो श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की तरफ जाने का जो जज्बा है वो देखते ही बनता है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है, तो जो श्रद्धालु है वो पूरी तरह से अपने इस खुशी का इजहार अलग अलग टोलियों में अलग अलग जगहों पर करते हैं। और जहाँ पर स्थानीय लोगों के अलावा जो यात्री भी जो है विभिन्न देश की जो रियासतों से यहाँ पहुंचे हैं वो ये देखकर उनका भी जज्बा बढ़ जाता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत और भक्तिमय माहौल जम्मू में बना हुआ है। साधु संतों की टोलियां यहाँ शिव भक्ति में लीन नजर आती है और जगह जगह पर लोग विभिन्न रूप में यहाँ पहुंचे हैं और इन साधुओं संतों का स्वागत जहाँ हो रहा है वही इनसे आशीर्वाद भी लिया जा रहा है। पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर रवाना होने से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु तवी रिवर फ्रंट पर पहुंचे हुए होते हैं। यहाँ तवी रिवर फ्रंट पर श्रद्धालुओं के घूमने बैठने की जगह भी बहुत है और शाम होते ही ये पूरा घाट जो है दीपों की रोशनी और शिव भक्ति से गूंज उठता है। कल दिन भर भी सुबह से ही पंजीकरण केंद्रों पर महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं की लंबी कतारें लगी रही। प्रशासन की तरफ से हालांकि इन स्थानों पर, जैसा कि मैंने कहा, कि तवी रिवर फ्रंट हो या भगवती नगर का बेस कैंप हो या उसके अलावा जो पंजीकरण के सेंटर्स हैं उनमें जो बैरिकेडिंग है, जो सुरक्षा व्यवस्था के की चीजें हैं उनको बढ़ाया भी गया है और जिसकी वजह से थोड़ी जगह जो है वो कम भी कई बार मिलती है श्रद्धालुओं को, लेकिन सब्र के साथ और बिल्कुल अपनी उसी श्रद्धा के साथ अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं और तमाम तरह की प्रक्रियाओं को पूरी भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये देखने को मिलता है कि ये जो यात्रा है ये सिर्फ पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा नहीं है, बल्कि सब्र के साथ अपनी बारी का इंतजार भी करना है, सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने देना है। तो एक अच्छा माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से जो यात्रा है वो पिछले तीन दिनों से बहुत बेहतर रूप से हर दिन यहाँ भगवती नगर के बेस कैंप से पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा की तरफ रवाना होती नजर आ रही है। तो इस दौरान मैं ये कहूँ कि श्रद्धालुओं का भी जो कहना है कि इनका पवित्र यात्रा पे आना, परिवार के साथ आना, बच्चों के साथ आना, महिलाओं के साथ देश के विभिन्न जो रियासतें हैं वहां से यहाँ पहुंचना है। कुछ लोग बसों में आए हैं और उसके अलावा जो अलग अलग जो गाड़ियां हैं उनमें

0: नई चीजें ऐड करनी होती है, वो सारी चीजों का समीक्षा की जाती है ताकि ये सफर जो है, कठिन सफर जो है, वो हर रोज बेहतर तौर पर आसानी के साथ चलता रहे। वही आज यानी 5 जुलाई को पवित्र गुफा में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए रवाना होने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 6731 रही, जिसमें बालटाल मार्ग की तरफ 2590 जबकि पहलगाम मार्ग की तरफ 4131 यात्री शामिल रहे, जिसमें पुरुष 4576 हैं, महिलाएं 1310 हैं। लगभग 251 वाहन भगवती नगर बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ सुबह तड़के लगभग 3 से 4 बजे के बीच में यहाँ से रवाना कर दिए गए हैं, और अभी तक की सूचनाएं हैं वो बिल्कुल आसानी के साथ अपने सफर को पूरा कर रहे हैं। रास्ते में भी इस पूरे तो NH 44 का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें भी जगह जगह पर बहुत खूबसूरत लंगर लगाए गए हैं, विभिन्न रियासतों के विभिन्न व्यंजन रखे गए हैं ताकि नाश्ते का हर एक चीज का ख्याल रखा जाए। और आज यात्रा में खास तौर पर विदेशी मूल के भी तीर्थ यात्री शामिल हैं, जिसमें पुरुष 38 हैं और महिलाएं लगभग 49 शामिल हैं। तो एक बहुत ही अच्छे माहौल में तीर्थ यात्रा रोजाना चल रही है, और यहाँ भी जम्मू में तमाम तरह के इंतजाम और तमाम तरह की जो भक्ति का माहौल जो है वो बना हुआ है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जावेद, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए
0: बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओं, ये थे जावेद मेहरा, जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अपडेट्स दे रहे थे। विस्तार में उन्होंने जो है जानकारी हम तक पहुंचाई। आप बने रहिए आकाशवाणी के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप एवं आकाशवाणी की OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं को बताते चले, इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय राजमार्ग से। क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं। तस्कीन, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी शुक्रिया। राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल ट्रैफिक के लिए बहाल है, ट्रैफिक चल रहा है और जो श्री अमरनाथ यात्रा के दोनों काफले आज सुबह जम्मू से रवाना हुए हैं तो वो इस वक्त जो पहला काफला जो जम्मू से बालतल के रास्ते निकलता है, बालतल के रास्ते जो जाना होता है तो वो थोड़ा पहले ही निकलता है, तो उसका जो गाड़ियां है 152 गाड़ियां 2590 जो श्रद्धालु इनमें सवार हैं, तो वो बस कुछ वक्त में अब बानहाल जो यहाँ पर इनके लंगर फैसिलिटी रखी गई है बानहाल के लांबर ग्राउंड में वहां पहुंचा चाहता है, बस कुछ वक्त में पहुंच रहा है जहां पर इनके लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम रखा गया है, तो इसके बाद इन्हें वादी कश्मीर की तरफ रवाना किया जाएगा। इसी तरह जो पहलगाम के रास्ते जारी है 139 गाड़ियों में 4131 सवार है जो श्रद्धालु, तो वो भी अभी रावत पहुंच चुके हैं, तो जहां पर चंद्रकूट के इलाके में उनका ब्रेकफास्ट वगैरह का इंतजाम इस वक्त चल रहा है। तो मजबूत तौर अगर देखें तो कल से थोड़े हल्के हल्के बादल हैं, कल थोड़ी हल्की बारिश हुई थी तो उससे मौसम जो है वो बहुत खुशगवार बना हुआ है, तो आज के जो यात्रा है इसमें जो खास जो बात है इसमें 38 जो फॉरनर्स हैं, जो खवातीन है, 38 जो मेल है, इसमें जो गैर मुल्की जो श्रद्धालु है वो भी आज की यात्रा में शामिल है। इसमें उसके अलावा 49 जो फीमेल है, खवातीन जो श्रद्धालु है वो भी आज की इस यात्रा में शामिल है। इस दौरान जो भारी रश है, जो गैर रजिस्टर्ड शुदा यात्री हैं या टूरिस्ट हैं, तो उनके लिए भी

0: जो जगह जगह पर उन्हें कहा जा रहा है, जहां पर भी ये जो जो यात्रा निकलने के बाद गाड़ियां आती हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से जो होकर कश्मीर की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि वो जिनकी रजिस्ट्रेशन है वो आगे बढ़े, उनको इस तरह नहीं जाने दिया जाएगा जब तक तो रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो कश्मीर की तरफ जाए उनको ये भी कहा जा रहा है कि जिनको होटल बुकिंग है वो होटल बुकिंग के बाद ही कश्मीर की तरफ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा ये जो रश बढ़ चुका है, जो बहुत ज्यादा हजारों की तैदाद में, एक तो आज जैसे 6721 यात्री है 291 गाड़ियों में, तो इसके अलावा जो अगर कल से देंगे जैसे 3 बजे का कट ऑफ टाइमिंग है राष्ट्रीय राजमार्ग पर बानहाल में, तो उसके बाद जो कश्मीर की तरफ ट्रैफिक को, मतलब जो टूरिस्ट होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं अमरनाथ यात्री के, तो उनको 3 बजे बाद कश्मीर जाने की बानहाल से आगे बढ़ने की बानहाल काजीगुड़ टनल क्रॉस करने की इजाजत नहीं होती। तो उनका रश जो है वो इसी तरह रामबन में 2 बजे के बाद उन्हें बढ़ने की आगे इजाजत नहीं होती। तो उनके रश को देखते हुए जो गैर रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड जो यात्री है, तो उनसे बार बार ये इंतजाम, जैसे कल भी इसमें IGP जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इस बारे में कहा कि जो अनरजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए और जो बाहरी राशि की वजह से उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। और होटल्स का भी कहा गया है कि जो भी टूरिस्ट वगैरह जा रहे हैं उन्हें कहा गया है कि उनकी बुकिंग होनी चाहिए, तब जाकर वो कश्मीर जा सकते हैं। तो इस दौरान कल एक यात्री जो बीमार हो गया था अचानक, जिसमें हाथ में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसका जो वापस उन्हें जम्मू, वापस उनको वेस्ट बंगाल भेजा जा रहा है क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें परमिट नहीं किया है। पिंकू देवनाथन इनका नाम है, वेस्ट बंगाल से है, तो उनका यहाँ नवयुगा टनल के पास उनको थोड़ा सा वो ज्यादा उनकी हालत खराब हुई थी, बाद में उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बानीहाल लाया गया, तो जहाँ पर डॉक्टर ने एडवाइस की कि वो पहाड़ों का सफर न करें, तो उनके अटेंडेंट साथ था। तो जो इंतजाम है यहाँ पर उनका कहना है कि उनका इंतजाम किया जा रहा है, उन्हें यहाँ से वापस जम्मू भेज दिया जाएगा ताकि वहां से वो अपने घर वापस जा सके। फिलहाल जो हाईवे का ट्रैफिक चल रहा है, बालतल जो यात्रा है वो बानीहाल पहुंच चुकी है और पहलगाम यात्रा जो है वो रामबन के चंद्रकूट इलाके में इस वक्त जो सुबह का नाश्ता कर रहे हैं।
1: मौसम के क्या कुछ अहवाल है अभी?
0: मौसम पिछले अगर 2-3 दिन से देखेंगे दिन में धूप होती है, लेकिन ओवरऑल बादल भी साथ साथ चल रहे हैं, हल्की हल्की फुहारे भी, बारिश और वक्त भी जो मौसम जो है अब्र आलूद बना हुआ है इस रामबन बानहाल एरिया में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया तस्कीन विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए। श्रोता, ये थे मोहम्मद तस्कीन, राष्ट्रीय राजमार्ग से अपडेट्स दे रहे थे। जैसा कि बता रहे थे कि मौसम जो है कई एक जगहों पर अवर आलूद भी रह सकता है। जैसा कि हम आपको बताते चले, आज जो है महकमे मौसम याद की ताज़ा पेशनगोई के मुताबिक जो है कई एक जगहों पर दोनों मार्गों पर जो है मौसम अवर आलूद ही रह सकता है। ताहम सभी तीर्थ यात्रियों से ये निवेदन किया गया है कि आप जो है एहतियाती तदाबीर से काम लें, पहले अपने साथ गर्म मलबूसात साथ रखें, विंडशीटर्स का इस्तेमाल करें, अम्ब्रेला साथ रखें, लेसेस वाले शूज़ जो है उन्हीं का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो यात्रा है ऊपरी क्षेत्र में जो यात्रा आपको करनी है उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में, आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालतल के मार्ग पर आप हमें FM बालतल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वीव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता एस तारिक पहलगाम के प्राचीन मार्ग से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास आज के दिन के हवाले से, आइए सुनते हैं। तारिक, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: आपका और सभी प्रिय श्रोताओं का मेरा शुभ प्रभात। आज 5 जुलाई है और बाबा अमरनाथ यात्रा का 3रा दिन है। पहलगाम के अमरेश्वरी पर्वत श्रृंखलाओं से सुनहरी धूप खुल उठी है और यात्रा मार्ग पर मौसम सुहाना है। बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ के श्रद्धालुओं की अध्यात्मिक यात्रा पूरी उत्साह और आस्था से नृत्य जारी है। आज सुबह 4 बजे नुनादार शिविर से लगभग 3000

आसानी मिले। आपको बताते चले, विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं, एफएम बातल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के अलावा आप हमें आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। आप बने रहिए आकाशवाणी के संग, क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुँचाते रहेंगे।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालतल के मार्ग पर आप हमें FM बालतल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं तो आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से समाचार हम सुन पाएंगे। रिले का बस कीजिए जरा सा इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी

0: योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहां पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहां पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
0: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और

0: गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।

0: रन ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उड़ान स्कीम के नए मरहले के तहत छोटे शहरों और दूर दराज के खितों को फिजाई कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाएगा।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: वजीर आजम मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह किया, जिससे भारत के शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे और इलाकाई कनेक्टिविटी को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने इस बात को नुमाया किया कि नई टर्मिनल इमारत का आर्किटेक्चर और इंटीरियर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।
1: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
0: इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान स्कीम का आगाज इलाकाई कनेक्टिविटी के भारत के सफर में नए बाब की शुरुआत होगी। जनाब नायडू ने कहा कि वजीर आजम के जरिए 28,840 करोड़ रुपए की तखमीना लागत वाली स्कीम के आगाज से 100 से ज्यादा नए और 200 हेलीपैड्स की तरक्की में आसानी होगी, जिससे किफायती हवाई सफर का लाखों लोगों का ख्वाब पूरा होगा और उभरते भारत की उमंगों की तकमील होगी।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सनात में सीजी सेमी के बाहर से मंगाए गए सेमी कंडक्टर की तरतीब और तजुर्बे के जदीद तरीन प्लांट OSAT का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और टेक्नोलॉजी शोबे के कई आलमी कायदीन भी मौजूद थे। 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से कायम इस जदीद फैक्ट्री की सालाना पैदावारी सलाहियत 5 अरब सेमी कंडक्टर चिप्स तक होगी। एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि सनान में कायम सीजी सेमी OSAT मरकज न सिर्फ मुल्क में चिप तैयार करने के इको निज़ाम को मजबूत करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद किफालत को फरोग देगा और आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन में भारत के मकाम को मजीद मुस्तहकम करेगा।
1: भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: उन्होंने मजीद कहा कि सनानंद का ये प्लांट इब्तदाई मरहले में सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने सीजी सेमी को मुस्तकबिल में पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर करने पर मुबारकबाद भी दी।
1: यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: इससे कबल सनानंद पहुंचने पर वजीर आजम ने आला टेक्नोलॉजी के हामिल प्लांट का दौरा किया, पैदावारी अमल का मुआयना किया और वहां काम करने वाले इंजीनियरों और ऑपरेटरों से मुलाकात करके उनसे तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी की कीमत में 13% इजाफा कर दिया है। प्याज की खरीदारी कीमत 1,875 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपए फी क्विंटल कर दी गई है। सारिफिन के उमूर खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत के मुताबिक नजरसानी शुदा खरीदारी कीमत से प्याज के काश्तकारों को बेहतर मुनाफा मिलेगा, जबकि कीमतों के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के खरीदारी अमल को भी

0: वस्तुवियत मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत सरकार की जानिब से प्याज का वाफिर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी नैफेड और कौमी कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF के जरिए जारी है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे 2025-26 के दूसरे पेशगी तखमीने के मुताबिक मुल्क में प्याज की पैदावार 307 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा होने का इम्कान है। वजारत ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्याज की मौजूदा ज़खीरा काफ़ी है और इस वक्त ज़खीरा शुदा प्याज की किल्लत के कोई आसार नहीं है। इस वक्त मुल्कगीर सतह पर प्याज की औसत खुर्दा कीमत 31 रुपये फी किलोग्राम है। जून 2026 के दौरान तकरीबन 1.5 लाख मैट्रिक टन प्याज बरामद की गई और प्याज की बरामदात मामूल के मुताबिक जारी है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मुतला किया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत की जानिब से 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब किरण रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल उमूर पर बामाने बहस, तफसीली तबादले ख्याल और अहम फैसलों पर तवज्जो दी जाएगी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नया तसव्वुर नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल एक सदी से भी ज्यादा अरसे से हो रहा है। राजस्थान में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हयातियाती ईंधन की आमेजिश के प्रोग्राम पर होने वाली मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करती है और जहां जरूरत होगी मौसूल होने वाली तजावीज को अपने काम में शामिल करते हुए इसलाहत भी करेगी। जनाब हरदीप सिंह पुरी ने मजीद कहा कि भारत में एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का तसव्वुर सबसे पहले साबिका कांग्रेस हुकूमत के दौर में शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि जब वो 2006 से 2008 के दरमियान ब्राजील में भारत के सफीर थे उस वक्त मुल्क की 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाने का हदफ मुकरर किया गया था लेकिन उस वक्त सिर्फ 1.4% एथेनॉल मिलाने का हदफ हासिल किया गया था।
2: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: आकाशवाणी खबरों का शोभा अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के तहत आज शजरकारी और माहौलियाती तहफ्फुज के लिए काम कर रहे देवेंद्र सूरा से की गई बातचीत नशर की जाएगी।
3: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये बातचीत आज सुबह 10:30 101.1 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुनी जा सकती है। इस बातचीत को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के मुजवजा दौरे से कबल भारत को ऑस्ट्रेलिया का एक अहम इकतसादी शराकत दार करार दिया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के दफ्तर ने कहा है कि दुनिया की चौथी बड़ी और तेजी से तरक्की पजीर मईशत होने के नाते भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए नहायत अहम इकतसादी शराकत दार है। जनाब एंथनी अल्बानीज ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी है जो मजबूत इकतसादी और सकाफती रवाबित की बुनियादों पर कायम है। उन्होंने मजीद कहा कि तिजारत, दिफा, सलामती और टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तआवुन दोनों ममालिक के लिए मुस्बत और बाहमी फायदे का बाइस बन रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरेन, कुवैत और उमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर इन मुल्कों के अपने हम मनसबों और आला क्यादत से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद भारत और मस्कूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालतल के मार्ग पर आप हमें FM बालतल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस एवं आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी हम उपलब्ध है। श्रोता, आपको बताते चले, आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा। आप हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए हम आपको प्रोत्साहित करते हैं। श्रोता, आप बेझिझक अपने विचार, अनुभव, प्रश्न हमारी टीम के साथ साझा कर सकते हैं। हमारे समर्पित हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हमारा मात्र एक हेल्पलाइन नंबर है, 9596990954। हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर आप सुनिए, हमारा मात्र एक हेल्पलाइन नंबर है, 9596990954। इसके अलावा आप हमें ईमेल आईडी के ज़रिए भी अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com, akashvanibaltal@gmail.com।

www.radiomirchi.com। आकाशवाणी क्षण-क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा। कुछ एक और अपडेट्स है आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, आपको बताते चले, अभी अभी मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है 1978 श्रद्धालु ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 1752 पुरुष, 150 महिलाएँ, 43 बालक, 12 साधु, 1 साध्वी, 20 ट्रांसजेंडर शामिल है। कुल मिलाकर 1978 श्रद्धालु ने जो है अभी ताज़ा रिपोर्ट्स मिलने तक जो है शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। आपको ये भी बताते चले, आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का चौथा जत्था जो है वादी की ओर रवाना किया गया, जो कुल 291 छोटे बड़े वाहनों में ये काफिला वादी की ओर रवा दवा है, जिनमें कुल 6721 श्रद्धालु जो है शिवजी के दर्शन प्राप्त करने आ रहे हैं। इन श्रद्धालु को जो है

बालतल और पहलगाम के प्राचीन मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा। बालतल के मार्ग से 2590 श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे, वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 4131 श्रद्धालु जो है शिवजी के दर्शन प्राप्त करने जाएंगे। बालतल के मार्ग से 1661 पुरुष, 443 महिलाएं, 9 बालक, 297 साधु, 93 साध्वी, 38 फॉरनर्स भी शामिल है। वही पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 2915 पुरुष, 867 महिलाएं, 13 बालक, 275 साधु, 61 साध्वी शामिल होंगी। कुल मिलाकर 6721 श्रद्धालु को जो है आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी की ओर रवाना किया गया। ये श्रद्धालु 291 छोटे बड़े वाहनों में घाटी की ओर रवा दवा है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोता, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हमारे संवाददाता रहीम रिजवान जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं। रिजवान, आपका स्वागत करते हैं इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बालतल मार्ग से आज तीसरे रोज भी तीर्थ यात्रा खुश असलूबी से जारी है। पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। मौसम भी सुहाना है। ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए 11,098 श्रद्धालुओं को आज बालतल बेस कैंप से पैदल डांडी पिट्ठू एवं गोडू पर सवार होकर पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी गई। सुबह 4 बजे से दुमेल कंट्रोल गेट पार करने वाले इन यात्रियों में 8,551 पुरुष, 2,099 महिलाएं, 124 बालक बालिका, 31 साधु, 31 साधियां एवं 262 सुरक्षा कर्मी थे। जय भोलेनाथ तथा जय जयकार का पवित्र नाद करते हुए श्रद्धालु आगे पवित्र गुफा की ओर रवाना हो रहे हैं। सतह समंदर से 3,888 मीटर यानी 12,756 फुट ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को बालतल मार्ग से ऊंचे पर्वतों के बीच 14 किलोमीटर का कठिन फासला तय करना पड़ता है, जिससे उन्हें अध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीती रात 10 बजे तक 15,108 श्रद्धालु शिवलिंगम का दर्शन करके वापस सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचे। इन श्रद्धालु में 12,420 पुरुष, 2,120 महिलाएं, 110 बालक बालिका, 108 साधु, 40 साधियां एवं 310 सुरक्षा कर्मी थे। दर्शन करके वापस बालतल पहुंचने वाले श्रद्धालु व्यवस्थाओं को लेकर काफी संतुष्ट थे। उन्होंने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस वर्ष प्रशासन ने यात्रियों के लिए हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं, वहीं सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। श्रोताओं, बीते 2 दिनों के दौरान बड़ी मात्रा में श्रद्धालु बालतल बेस कैंप पहुंचे तथा घाटी आगमन होने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अलबत्ता प्रशासन एवं श्रद्धालु को उस वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब पंजीकरण के बगैर यात्री यहां पहुंचते हैं। प्रशासन के द्वारा उन्हें बार बार ये सूचना दी जाती है कि वह पंजीकरण के बगैर तीर्थ यात्रा पर जाने का इरादा न करें, क्योंकि पंजीकरण के बगैर उन्हें पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रोताओं, बालतल मार्ग से पवित्र गुफा जाने वाले श्रद्धालुओं को अवश्य ट्रांजिट कम शादीपुरा एवं ट्रांजिट कम मैनगाम पार करना पड़ता है, तो श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर अपने पवित्र सफर के दौरान अगर वह 5 बजे के बाद इन दोनों ट्रांजिट कैंप

0: टेम्पो तक पहुंच गए तो उन्हें 5 बजे के बाद आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दौरान बीती रात 10 बजे तक 2402 यात्री ट्रांजिट कंपनी का पहुंचे। इन श्रद्धालुओं में 1920 पुरुष, 383 महिलाएं, उन्होंने बालक बालिका, 9 साधु एवं 1 ट्रांसजेंडर शामिल था। इन श्रद्धालुओं में 1808 पंजीकरण के बगैर यहां पहुंचे, जबकि 594 ही रजिस्टर्ड थे। यहां कायम पजीर यात्रियों को रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह सवेरे बालतल बेस कैंप की तरफ जाने की अनुमति दी गई। श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आपकी ये तीर्थ यात्रा संपूर्ण तरीके पर सफल हो जाए। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये थे रहीम रिजवान, बालतल के मार्ग से अपडेट दे रहे थे। जैसा कि ये भी बता रहे थे कि बहुत सारे श्रद्धालु जो है ऑनलाइन पंजीकरण के बगैर, रजिस्ट्रेशन के बगैर यात्रा के लिए निकलते हैं, फिर आगे जाकर जो है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले ही प्रशासन की ओर से ये निर्देश दिया गया है कि आप जो है जहाँ से भी आप आ रहे हैं एडवांस में ही आप अपना ऑनलाइन पंजीकरण करें, या जब आप वादी की ओर रवाना होते हैं तो जम्मू में जो है या वादी में भी बहुत सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले ही आप अपनी ऑनलाइन पंजीकरण करें, उसके बाद अपना RFID कार्ड हासिल करें। उस सब के लिए जो है आप अपने साथ आधार कार्ड ज़रूर रखिए, ताकि आपको जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो रहती है वो भी आप अपने साथ ज़रूर रखें, मेडिकल रिकॉर्ड्स भी अपने साथ रखें, ताकि पंजीकरण के दौरान आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और कोशिश करें कि पहले ही आप ऑनलाइन पंजीकरण करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, ताकि आगे जाकर जो है दोनों मार्गों पर आप बआसानी ये तीर्थ यात्रा का सफ़र जो है कर पाए। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालतल के मार्ग पर आप हमें FM बालतल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, 9:25 होने को है, कुछ ही क्षणों में आपके लिए समाचार पेश करते हैं।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख अनवारुल हक। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे ज़ुमरे के शहरों, नीज़ दूर दराज इलाकों में हवाई सफ़र को एक नई जहत देने की गरज से विकसित उड़ान स्कीम के नए मरहले की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत 28,840 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं, जिनके इस्तेमाल से ऐसे शहरों में हवाई रबते को मज़ीद मजबूत बनाया जा सकेगा। इसी दौरान वज़ीरे आज़म ने गुजरात के सानंद इलाके में शुरू किए गए CG सेमी कंडक्टर प्लांट को मुल्क के इलेक्ट्रॉनवी इनकलाब का अगला कदम करार दिया है। उन्होंने इस जदीद तरीन आउटसोर्स्ड प्लांट का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इसमें हर साल 20 करोड़ चिप्स तैयार करने की सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म ने प्लांट में काम करने वाले इंजीनियरों और दीगर मुलाजमीन की मेहनत की सराहना की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे की रनवे बंद करने से मुतल्लिक मुजवजा मनसूबे को रद्द करने पर मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आला ने कहा है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में बिला खलल हवाई राबता दस्तियाब रहेगा और हवाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों को राहत मिलेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम, ताजरों और सियाहत से जुड़े अफराद के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये मामला ज़ाती तौर पर मरकज़ के साथ उठाया था। उन्होंने कहा कि सियाहती सीज़न के दौरान हवाई रबते को बरकरार रहना जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। श्री अमरनाथ जी यात्रा बहुसन खूबी जारी है और आज भी बालतल और नुनवन के बुनियादी कैंपों से कई हजार यात्रियों को पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया। उधर जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज अलल सुबह 6,721 यात्रियों के एक और काफिले को आज वादी की तरफ रवाना किया गया। यात्रा के रास्तों पर श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए सलामती समेत तमाम तर इंतजाम दस्तियाब कराए गए हैं। इस बारे में कई यात्रियों का कहना है,
1: हम महाराष्ट्र से आए, आकर यहाँ पर लंगर में हमको अच्छी व्यवस्था

0: हमको सवेरे जाना है और हम यात्री के लिए यहाँ पर जो सुविधा मिली बहुत अच्छी मिली। खाना पीना की व्यवस्था बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और यहाँ पर जो सेवेकरी है वो बहुत अच्छे लगे, बड़े प्यार से हमसे आए और हम 6 यात्री है और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, बहुत अच्छा है और हमको बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर और इनके लंगर का खाना खाकर।
1: मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, सब्जी मंडी घंटाघर दिल्ली साथ। बालटाल से गुफा तक सफर बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया अच्छी सुविधा थी जिसकी सुविधा के कारण हम बाबा के दरबार के बिल्कुल किनारे खड़े हैं। आपके सुविधा के कारण ही बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
2: आज सुबह 8 बजे तक मजीद 1978 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। जैसे कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि कल शाम तक पवित्र गुफा में हाजिरी देने वाले यात्रियों की तादाद 32,000 से तजावुज़ कर गई है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जारी सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की कुलहुम निज़ामत और ज़मीनी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। LG ने कहा कि इस साल यात्रा ट्रैक्स पर यात्रियों की तादाद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल किया जा रहा है, लिहाजा यात्रियों की सलामती और सहूलत के लिए रजिस्ट्रेशन शेड्यूल पर अमल करना लाजमी है। LG ने तमाम महकमों और सलामती एजेंसियों को हिदायत दी है कि वह सभी मुतल्लिकीन बशमूल लंगर तंजीमों खिदमत फराहम कुनंदगान और दीगर गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर काम करें। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात ने तमाम मुतल्लिका एजेंसियों को यात्रियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए सभी अहम मकामात, खासतौर पर कौमी शाहरा, यात्रा के रूटों और दूसरी ज़रूरी राहदारियों पर निगरानी बढ़ाने की हिदायत दी है। वो पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में इस नस्बत से ज़रूरी सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा ले रहे थे। मीटिंग में IGP कश्मीर और IGP जम्मू समेत दीगर सभी सीनियर पुलिस अहदेदारों और अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने यात्रियों की महफूज आवाज को यकीनी बनाने के सिलसिले में वजह करदा मियारी जवाबित के बारे में DGP को ज़रूरी जानकारी फराहम की। नाज़िम ज़िराअत कश्मीर सरताज अहमद शाह ने कहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर किसानों के दौरे उनकी सलाहियत साजी के लिए अहमियत के हामिल होते हैं, जो उन्हें नित नई ज़रई तकनीकों, इख्तराई काश्तकारी और देरपा ज़िराअत के कामयाब नमूनों से रोशनास कराते हैं। वो श्रीनगर में महकमे ज़िराअत के सदर दफ्तर पर किसानों के 5 रोज़ा जानकारी दौरे के इख्तिताम पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस दौरे के तहत इन किसानों को मुख्तलिफ मकामात पर ज़मीनी सतह पर अमलाए जा रहे नए तौर तरीकों के बारे में बराह रास्त जानकारी दी गई। NIT श्रीनगर के मेज़बानी में कल शुरू हुआ कुल हिंद बैन NIT क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में NIT श्रीनगर की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए NIT मणिपुर को 10 विकेट से हरा दिया। कौमी सतह के इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 24 टीमें शिरकत कर रही हैं, जो कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के NIT से ताल्लुक़ रखती हैं। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.8 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
3: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
4: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है, सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
4: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
3: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
1: बर्फानी के दर्शन है परम आनंद। इस आनंद का लुत्फ उठाने जब आए हैं तो साथ में नॉन प्लास्टिक पानी की बॉटल, खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, गुड़ और चॉकलेट जैसा जरूरी सामान साथ रख लें, ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। साथ ही अपने सामान में वैसलीन, कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन जरूर रखें, ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। ये भी ध्यान रखें कि सफर अकेले ना करें, ग्रुप में चलें, ताकि आपके साथी हमेशा आपकी नजर में रहें। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर जाएं या फिर 14464 पर कॉल करें।

श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz DTH की आराधना सर्विस आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हमारे संवाददाता इमरान नाइक।

0: को श्रीनगर ट्रांजिट कैंप से जुड़ चुके हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं इमरान से। इमरान, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 बड़े ही न्यायी थी, मजहबी अकीदत जोश और खरोश और पुरअमन माहौल में इस वक्त जारी है और मुल्क भर से हजारों यात्री जो है कश्मीर पहुंच रहे हैं और बालतल और पहलगाम के रास्तों से मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हो रहे हैं और इंतजामिया श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, पुलिस, फौज और दीगर इदारों की जानिब से यात्रियों की सहूलियत और हिफाजत के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं और इंतजामिया की जानिब से रिहाइश, पीने के पानी, तिब्बी सहूलियात, सफाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, RFID निगरानी, एमरजेंसी सर्विसेज और दीगर जो बेसिक फैसिलिटीज है वो फराहम की जा रही है और ताकि यात्रियों को किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और जहां तक श्रीनगर का ताल्लुक है, इधर श्रीनगर के पांथा चौक यात्री ट्रांजिट कैंप को भी मुकम्मल तौर पर फाल रखा गया है, जहाँ यात्रियों के लिए कयाम, खाने पीने, तिब्बी इमदाद, पीने के पानी, सफाई और सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए और इस कैंप से यात्रियों को बालतर और पहलगाम से पहलगाम बेस कैंपों की तरफ की जानिब रवाना किया जा रहा है। और इसके अलावा जहां तक श्रीनगर का ताल्लुक है, हुकूमत की जानिब से यात्रियों के लिए जाम देख रहे हैं कि हर तरह की सुविधाएं रखी गई है और इस दौरान गुज़िश्ता रोज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रा के इंतजाम का जायजा भी लिया श्रीनगर में और इजलास में चीफ सेक्रेटरी, DGP, श्राइन बोर्ड, पुलिस, फौज और दीगर महकमों के जो हायर ऑफिशियल्स है उन्होंने भी शिरकत की और मीटिंग में बताया गया कि बड़ी तादाद में ऐसे यात्री कश्मीर पहुंच रहे हैं जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, जिसकी वजह से इन्हें इंतजार करना पड़ रहा है और गवर्नमेंट ने वाजिया किया है कि सिर्फ वही यात्री मुकद्दस गुफा की तरफ जा सकेंगे जिनके पास अपनी जो मुकर्रर तारीख या जो डेट की जो सही रजिस्ट्रेशन होगी। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने तमाम यात्रियों से अपील की है कि कश्मीर आने से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी मुकम्मल करें, उसको कम्प्लीट करें, विदाउट रजिस्ट्रेशन या बगैर रजिस्ट्रेशन सफर ना करें, अपनी रजिस्ट्रेशन में जो डेट दर्ज की गई है उस पर ही यात्रा के लिए रवाना हो स्टेट के हिसाब से और अगर बगैर रजिस्ट्रेशन कश्मीर पहुंच गए तो अपनी जो बारी है उसका इंतजार करें और RFID कार्ड हासिल किए बगैर बेस कैंपों की तरफ ना जाएं। और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने भी यात्रा की सिक्योरिटी का जायजा लेते हुए तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को हाई अलर्ट रहने, कौमी शाहरा या नेशनल हाईवे, बालताल, पहलगाम रास्तों पर जो सर्विलेंस है उसे मजीद सख्त करने और यात्रियों की हर मुमकिन मदद करने की उन्होंने कल हिदायत दी है। और इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशल गर्ग ने IGP कश्मीर VK प्रीधि के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में की और उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वो सिर्फ अपनी रजिस्टर्ड तारीख पर ही यात्रा करें ताकि इंतजामात मुतासिर ना हो और तमाम जो डिवोटीज है, जो यात्री है वो महफूज तरीके से दर्शन कर सकें। और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी यकीन दिलाया है, ये इंश्योर किया है कि तमाम रजिस्टर्ड जो यात्री है उनको फेज मैनर में या मरहलावार यात्रा का मौका फराहम किया जाएगा और उनकी हिफाजत और उनकी सहूलियत के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए। सो ओवरऑल आज के दिन के हवाले से भी श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैंप से एक बड़ी तादाद जो है यात्रियों की कल शाम को पहुंची थी और आज दो जो है एक पहलगाम और दूसरा जो है नुनवन बेस कैंप की तरफ रवाना किया गया पवित्र गुफा के दर्शन के लिए, जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चे और साधु, कुछ साधु भी शामिल थी और सख्त तरीन सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच में वो जा रहे हैं। और इसके अलावा जो यात्री दर्शन करके आ रहे हैं वो बड़े पुरअमन माहौल से यात्रा करके यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ से उन्हें वापस रवाना किया जा रहा है और यहाँ श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के लिए हर तरह की, जैसे मैंने कहा, कि सुविधाएं या सहूलियात रखी गई है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इमरान, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए। श्रोताओं, ये थे इमरान नाई को श्रीनगर ट्रांजिट कैंप से जो है अपडेट दे रहे थे, बता रहे थे कि सरकार द्वारा जो है इस बात पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कि सभी श्रद्धालु जो है एडवांस में ही अपना ऑनलाइन पंजीकरण करें, अपने अपनी स्ट्रीट्स में ही जो है ये काम आप पूरा मुकम्मल करें, उसके बाद ही आप वादी की ओर रवाना हो यात्रा की और जो है आप अपना सफ़र बांधें, क्योंकि जब आप विदाउट रजिस्ट्रेशन वादी की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है कई एक काउंटर्स मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर जो है आपको भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है और उस बीच जो है आपको कई

ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती है और उन्हें यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाती है, उन्हें अमरनाथ गुफा की और दोनों मार्गों से जो है कतई इजाज़त नहीं दी जाती है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पंजीकरण करने के बगैर आपको जो है यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको बताते चले श्रोताओं, जब भी आप यात्रा की ओर आने की ठान ले, यात्रा की ओर आने का आपका मन बने, कोशिश करें कि आप पहले ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल करें। अगर आप वादी की ओर रवाना होते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे काउंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है आपको भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि पहले ही आप ये प्रोसेस जो है मुकम्मल करें, ताकि आपको जो है यात्रा के दौरान किसी भी दुविधा का सामना ना करना पड़े। आपको बताते चले, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आप अपना आधार कार्ड जो है साथ रखें, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी साथ रखें, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो भी अपने साथ रखें, क्योंकि ये सब दस्तावेज़ात जो है आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान जो है काम आएंगे। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद, ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही आपको जो है RFID कार्ड दिया जाता है। RFID कार्ड जब आप हासिल करते हो, तो उस कार्ड का जो है आप इस्तेमाल बराबर करते रहे, आप अपने साथ रखें, उसका इस्तेमाल करते रहे पूरी यात्रा के दौरान, ताकि उस कार्ड के ज़रिए जो है आपको बाकी सुविधाएँ उपलब्ध हो। अब बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में, आकाशवाणी शिक्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा।

श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोता, आपको बताते चले, ताज़ा सूचना के अनुसार पवित्र गुफा में जो है बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करने में 5,917 श्रद्धालु जो है वापस आ रहे हैं, जिनमें 4,405 पुरुष, 1,270 महिलाएं, 100 बालक, 40 साधु, 8 साध्वीज और 94 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है 5,917 श्रद्धालु ने जो है बाबा भोलेनाथ के दर्शन आज प्राप्त किए हैं, जिनमें 4,405 पुरुष, 1,270 महिलाएं, 100 बालक, 40 साधु, 8 साध्वी, 94 सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल है। आपको ये भी बताते चले, आज प्रातः सुबह जो है जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 291 छोटे बड़े वाहनों में 6,721 श्रद्धालु घाटी की ओर रवाना किए गए, जिनमें 2,590 तीर्थ यात्री बालतल के मार्ग से शिवलिंगम के दर्शन प्राप्त करेंगे। वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 4,131 श्रद्धालु शिवजी के दर्शन प्राप्त करेंगे। बालतल के मार्ग से 1,661 पुरुष, 443 महिलाएं, 9 बालक, 297 साधु, 93 साध्वी, 38 पुरुष फॉरनर, 49 महिलाएं इनमें शामिल है। वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 2,915 पुरुष, 867 महिलाएं, 13 बालक, 275 साधु, 61 साध्वी शामिल होंगी। श्रोता, आपको बताते चले, जब आप भगवती नगर बेस कैंप से घाटी की ओर रवाना किए जाते हैं, पहलगाम होते हुए जो है लांबर ग्राउंड में ये काफिला दो हिस्सों में तकसीम होता है, विभाजन होता है इस जत्थे का। एक हिस्से को जो है श्रीनगर ट्रांजिट कैंप की ओर रवाना किया जाता है, वहीं दूसरे हिस्से को पहलगाम की ओर रवाना किया जाता है। दो रास्तों से जो है आप पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाते हैं। पहलगाम के प्राचीन मार्ग से आप चंदनवाड़ी से होते हुए पिसू टॉप, शेषनाग, नागाकोटी, महागुन स्टॉप, पंचतरनी और उसके बाद जो है आप संगम पहुंच जाते हैं। संगम एक ऐसा द्वार जहां पर दोनों रास्तों से

आए तीरथ एक साथ मिल जाते हैं। बालतल की अगर बात करें तो बालतल से जो है आप नीलगर, बालतल, धुमेल और ब्रारीमर्ग से होते हुए आप संगम पहुंच जाते हैं। संगम एक ऐसा स्थान जहां पर सभी यात्री एक साथ मिल जाते हैं और संगम से जो है 3 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप पवित्र गुफा पहुंच जाते हैं, जहां आप शिव जी के दर्शन प्राप्त करते हैं, जहां आप शिवलिंगम के दर्शन प्राप्त करते हैं, जहां आपका ये पवित्र सफ़र जो है मुकम्मल होता है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुँचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा

0: के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहने, रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालतल के मार्ग पर आप हमें FM बालतल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 रवा दवा है। इस वर्ष की यात्रा में सरकार द्वारा उठाए गए इकदामों से सभी श्रद्धालु बेहद खुश और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और सरकार एक साथ इस बात को यकीनी बनाने में जुटे हुए हैं कि सभी तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। हर वर्ष की तरह RFID ट्रैकिंग, हेल्पलाइन सर्विस और अन्य डिजिटल सुविधाएं तीर्थ यात्रियों के लिए उपलब्ध रखी गई है। सुविधाओं के हवाले से यात्रियों के तासरात सुनते हैं।
1: जेएन के पुलिस अच्छे हमको मदद कर रहे हैं, बाकी सब अच्छा है सर जी।
2: मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं अम्बाला कैंट हरियाणा से आई हूँ। कश्मीर पुलिस चारों तरफ अपने बिल्कुल तत्परता से काम कर रही है और सबका ध्यान रख रही है। किसी को भी कोई परेशानी हो वो तुरंत हाजिर हो रहे हैं। बहुत ही चारों तरफ ये लोग बहुत मदद कर रहे हैं और जिसमें कि मेरा रजिस्ट्रेशन आगे का था और इन्होंने मेरे लिए बहुत हेल्प करी।
3: मेरा नाम विक्की है, मैं मीरठ से आया हूँ। जो पुलिस है उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, सब पुलिस ने जैसी व्यवस्था थी करवाई है।
4: MP से हूँ सर मैं, और जहाँ की पुलिस बहुत अच्छी काम कर रही है और सभी जनता को अच्छे अच्छे कूपन काट काट के दे रही है। जनता बहुत परेशान थी, वो पुलिस वाले सही कर रहे हैं।
5: जाटपुर से आए, नाम ओम दुबे है। यहाँ पर पुलिस

0: प्रशासन एकदम सही काम कर रहा है, पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है।
1: मैं यूपी से हूँ, लखनऊ से आया हूँ। पुलिस ने हमारा यहाँ के प्रशासन ने बहुत हेल्प की है, उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पहुँच पाए हैं।
2: अब आ रहे हो? मैं अमन गुप्ता, मैं छत्तीसगढ़ से आया। कि पुलिस ने बहुत अच्छे से सबको भगदड़ को कंट्रोल में किया और बहुत अच्छे से सबको मैनेज करके आगे किया है।
3: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
4: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है, सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
4: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
3: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालतल के मार्ग पर आप हमें एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के अलावा आप हमें आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोतो, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज चौथा जत्था जो है वादी की ओर रवाना किया गया। आपको बताते चले, आज सुबह प्रातः मुख्य भगवती नगर बेस कैंप से 2091 छोटे बड़े वाहनों में कुल 6721 श्रद्धालुओं को जो है वादी की ओर रवाना किया गया, जिनमें से बालतल के मार्ग से 2590 श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 4131 श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करेंगे। श्रोताओं, ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियां, बहती नदियां और शिव भक्तों का अद्भुत वातावरण तीर्थ यात्रियों को एक अलग ही आध्यात्मिक संसार में ले जाता है। वाकई ये यात्रा हमें केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं देती, बल्कि प्राकृति के संरक्षण का संदेश भी देती है। हिमालय की ये पवित्र भूमि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इसलिए प्रत्येक यात्री का ये कर्तव्य है कि वे

पर्यावरण की रक्षा करे, स्वच्छता बनाए रखे, प्लास्टिक तथा अन्य प्रदूषणकारी वस्तु का कतई उपयोग ना करे। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का आप पालन करते रहे ताकि दोनों मार्गों से जो है आपकी जो यात्रा है सफलता पूर्वक तरीके से मुकम्मल हो पाए। श्रोता, तो आपको बताते चले, मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है दोनों मार्गों पर अभी मौसम खुशगवार है। ताहम अगले 12 घंटे के दौरान जो है महकमा मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है कई कई जगहों पर जो है हल्की वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है पवित्र गुफा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19.2 रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम 9.4 डिग्री सेंटीग्रेड पवित्र गुफा में जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: बर्फानी के दर्शन है परम आनंद। इस आनंद का लुत्फ उठाने जब आए हैं तो साथ में नॉन प्लास्टिक पानी की बॉटल, खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, गुड़ और चॉकलेट जैसा जरूरी सामान साथ रख लें ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। साथ ही अपने सामान में वैसलीन, कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन जरूर रखें ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। ये भी ध्यान रखें कि सफर अकेले ना करें, ग्रुप में चलें ताकि आपके साथी हमेशा आपकी नजर में रहें। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर जाएं या फिर 14464 पर कॉल करें।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।

यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालतल के मार्ग पर आप हमें एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के अलावा आप हमें आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का चौथा जत्था जो है आज वादी की ओर रवाना किया गया जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से। आपको बताते चले, दोनों मार्गों पर जो है मौसम अभी खुशगवार है। ताज़ा सूचना के अनुसार जो है दोनों मार्गों पर मौसम सुहाना है और दोनों मार्गों पर जो है तीर्थ यात्री पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है। श्रोताओ, आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप जो है सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे। कोशिश करें कि आप पहले ही रजिस्ट्रेशन परमिट हासिल करें। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आप अपना RFID कार्ड हासिल कर सकते हैं। जब भी आप जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुँचे तो कोशिश करें कि वहीं से आप जो है अपना RFID कार्ड हासिल करें और RFID कार्ड का इस्तेमाल जो है आप पूरी यात्रा के दौरान मुसलसल करते रहे। इस कार्ड को जो है आप पहनाए रखें। RFID कार्ड जो है आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। RFID का इस्तेमाल आप ज़रूर करते रहे और कोशिश करें कि जब आप वादी की ओर रवाना होते हैं दोनों मार्गों में से, चाहे आप बालतल की ओर से जा रहे हो या पहलगाम के प्राचीन मार्ग से जो है आप पवित्र गुफा की ओर जा रहे हो, आप कोशिश करें कि आप जो है अपने साथ ऊनी कपड़े रखें, गर्म अलबूसात रखें, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो है कब वर्षा होगी इस बात का पता नहीं रहता है। पहले आप कोशिश करें कि आप अपने जो है साथ गर्म अलबूसात रखें और अम्ब्रेला, विंड चीटर, रेनकोट, वाटरप्रूफ शूज़ और बाकी चीज़ें जो है आप अपने साथ रखें। वाटरप्रूफ बैग भी जो है आप अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि उसमें जो है आप अपना खान पान की जो चीज़ें हैं वो आप उनमें रख सकते हैं, क्योंकि जब आप वर्षा में चलते हैं तो आपके साथ जो कपड़े रहते हैं वो गीले हो जाते हैं या बाकी खाने पीने की जो चीज़ें होते हैं वो गीले हो जाते हैं। कोशिश करें कि वाटरप्रूफ बैग का जो है आप इस्तेमाल करें, वो आप पहले ही अपने साथ रखें। और जब भी आप दोनों मार्गों पर चल रहे हो कोशिश करें कि एक समूह में चले, कोई भी शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है या कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है वहाँ आप ना जाए और सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका आप ज़रूर पालन करें और स्थानीय जो प्रशासन वहाँ पर है उनके साथ कॉपरेट करते रहे पूरी यात्रा के दौरान, ताकि आपकी जो ये यात्रा है सफल और सुखद रहे। और ये भी आपको बताते चले, आप अपने साथ जो है नेम और एड्रेस की पन्नी जो है अपने साथ ज़रूर रखें, या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड जो आइडेंटिटी कार्ड आपका होगा वह अपने साथ ज़रूर रखें, और उस पर जो है आप अपना टेलीफोन नंबर भी एक पर्ची पर लिख कर रखें और एक समूह में यात्रा करें। कोई भी शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है और जो भी डेजिग्नेटेड रूट्स हैं उन्हीं को आप फॉलो करते रहे, और जो भी सरकारी प्रशासन आपको दोनों मार्गों पर मिले उनके साथ कॉपरेट करते रहे, ताकि ये जो ये पूरी यात्रा है आपकी वो सफल और सुखद तरीके से मुकम्मल हो पाए। आप आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में बने रहिए। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुँचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के संग।

श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे

0: भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहें। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
1: बाबा बर्फानी के दर्शन है परम आनंद। इस आनंद का लुत्फ उठाने जब आए हैं तो साथ में नॉन प्लास्टिक पानी की बॉटल, खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, गुड़ और चॉकलेट जैसा जरूरी सामान साथ रख लें, ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। साथ ही अपने सामान में वैसलीन, कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन जरूर रखें, ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। ये भी ध्यान रखें कि सफर अकेले ना करें, ग्रुप में चलें, ताकि आपके साथी हमेशा आपकी नजर में रहें। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर जाएं या फिर 14464 पर कॉल करें।

0: परम आनंद। इस आनंद का लुत्फ उठाने जब आए हैं तो साथ में नॉन प्लास्टिक पानी की बॉटल, खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, गुड़ और चॉकलेट जैसा जरूरी सामान साथ रख लें ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। साथ ही अपने सामान में वैसलीन, कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन जरूर रखें ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। ये भी ध्यान रखें कि सफर अकेले ना करें, ग्रुप में चलें ताकि आपके साथी हमेशा आपकी नजर में रहें। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर जाएं या फिर 14464 पर कॉल करें।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप बेझिझक अपने विचार, अनुभव और प्रश्न जो है हमारी टीम के साथ साझा करें। हमारे समर्पित हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हमारा मात्र एक हेल्पलाइन नंबर है, 9596990954। हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर सुने, हमारा मात्र एक हेल्पलाइन नंबर है, 9596990954। इसके अलावा आप हमें ईमेल आईडी के ज़रिए भी अपने विचार और अनुभव जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com, akashvanibaltal@gmail.com। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं को बताते चले, ताज़ा सूचना के अनुसार जो है 11 बजे तक अमरनाथ गुफा से 10,319 श्रद्धालु जो है शिवजी के दर्शन प्राप्त करने में सफल हुए हैं, जिनमें 7,655 पुरुष, 2,271 महिलाएं, 177 बालक, 67 साधु, 19 साध्वी, 1 ट्रांसजेंडर और 129 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 11 बजे तक 10,319 से जायद जो है श्रद्धालुओं ने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। जिन तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, वो बालतल से होते हुए जो यात्रा कॉन्वॉय जो है वो नवयुग टनल अभी अभी पार कर चुके हैं। ये यात्रा जो है अब बानिहाल की ओर रवा दवा है। श्रोता, आपको याद दिलाते चले, आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 6,721 श्रद्धालु को जो है घाटी की ओर रवाना किया गया, जो 291 छोटे बड़े वाहनों में वादी की ओर रवा दवा है। इनमें से 2,590 श्रद्धालु जो है बालतल के मार्ग से पवित्र गुफा के दर्शन प्राप्त करेंगे, वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 4,171 श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। बालतल के मार्ग से 1,661 पुरुष, 443 महिलाएं, 9 बालक, 297 साधु, 93 साध्वी, 38 फॉरेनर और पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 2,915 पुरुष, 867 महिलाएं, 13 बालक, 275 साधु, 61 साध्वी शामिल है। कुल मिलाकर 6,721 श्रद्धालुओं का जत्था जो है आज वादी की ओर रवाना किया गया, जो आहिस्ता आहिस्ता अब अमरनाथ गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। आपको याद दिलाते चले, आज 11 बजे तक जो है अमरनाथ गुफा से होते हुए कुल मिलाकर जो श्रद्धालु जो है अब वापस आ चुके हैं, जिन्होंने दर्शन प्राप्त किए हैं, बालतल से होते हुए ये कॉन्वॉय जो है नवयुग टनल पार कर चुकी है, अब ये कॉन्वॉय जो है बानिहाल की ओर रवा दवा है। आज दिन की अगर बात करें, 11 बजे तक 10,319 तीर्थयात्रियों ने जो है बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए, जिनमें 7,655 पुरुष, 2,271 महिलाएं, 177 बालक, 67 साधु, 19 साध्वी, 1 ट्रांसजेंडर और 129 सुरक्षाकर्मी शामिल है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष

0: जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का

0: एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालतल के मार्ग पर आप हमें FM बालतल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, 12 बजने वाले हैं, आइए समाचार सुनते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए यह एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में

जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH के आराधना सर्विस एवं आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी हम उपलब्ध है।

श्रोताओं, यात्रा के दौरान पवित्र गुफा तक के इस सफ़र में आपको प्राकृतिक की सुंदरता और शिव भक्तों के भीड़ के साथ चलते चलते आपका मन जो है प्रसन्न रहता है। नई फूर्ति, नई ऊर्जा और तनाव से मुक्ति मिलती है। आप में सकारात्मकता आती है। शिव जी से यही प्रार्थना, आपकी ये पूरी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: जय बाबा बर्फानी।
0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके

0: सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, डीटीएच की आराधना सर्विस एवं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर की आराधना चैनल पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। और साथ ही साथ जो है हम डीटीएच और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके लिए दस्तयाब हैं। जी हाँ, मैं हूँ आपकी उद्घोष शिक्षाही नरीशी, तो जुट चुकी हूँ आपके साथ। आप इस विशेष प्रसारण में मैं आपकी सेवा में रहूँगी बराबर 6 बजे तक। बस हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि पल पल के अपडेट्स आप तक पहुँचाए, और हमारी यही मनोकामना है हर यात्री के जो बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हो, हर यात्री को सुखल और सफलता के साथ वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करे, और बाबा भोलेनाथ की कृपा हर यात्री पे बनी रहे।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, DTH की आराधना सर्विस एवं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल पर भी हम आपके लिए उपस्थित रहते हैं। साथ ही साथ आप हमें DTH पर भी सुन रहे हैं और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके लिए दस्तियाब रहते हैं। तो आपके लिए बता दें कि साइका मेरे साथ जुड़ चुकी है। तो श्रोताओ, आपके लिए हम अपडेट आपके साथ साझा करना चाहेंगे। तो साइका
1: जी,
0: बता दें अपने श्रोताओं को।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ, तो हम आज अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आज प्रातः
1: जी
0: 3 बजे से 3:30 बजे तक जो है जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से कुल मिलाकर जो है 6,721 तीर्थ यात्रियों को घाटी की ओर रवाना कर दिया गया, जिसमें हम बात करें कि दो मार्ग हैं जिससे ये तीर्थ यात्रियों को रवाना कर दिया जाता है। एक हमारा है बालतल का छोटा मार्ग, वहाँ से 2,590 तीर्थ यात्रियों को 152 छोटे बड़े वाहनों में रवाना कर दिया गया, और जो हमारा पहलगाम का प्राचीन मार्ग है वहाँ से 4,131 तीर्थ यात्रियों को 152 छोटे बड़े वाहनों में रवाना कर दिया गया। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे आज प्रातः जो है 3 बजे से 3:30 बजे तक जम्मू बेस कैंप से, भगवती नगर के बेस कैंप से 6,721 तीर्थ यात्रियों को कुल मिलाकर 291 छोटे बड़े वाहनों में रवाना कर

0: अमरनाथ यात्रा पे आ रहे सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के रास्ते में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे तक जा सकता है, इसीलिए अपने साथ वूलन कपड़े लेकर चलें। सफर के दौरान बारिश के आसार भी होते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला, रेनकोट, विंड शीटर और वाटरप्रूफ शूज भी साथ रखना जरूरी है। याद रहे कि अपना आईडी कार्ड, यात्री परमिट और इमरजेंसी पर्पस के लिए एक नोट साथ रखें, जिसमें आपके सफर की तारीख पे ही जाने वाले किसी और यात्री का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चले और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ न करें जिससे वहाँ का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम की संग। जहां श्रोताओं, हम आपको हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप बेझिझक अपने विचार, अनुभव और प्रश्न हमारी एकमात्र हेल्पलाइन के माध्यम से हमारी टीम के साथ या हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है हमारा 9596990954 9596999054। साइका, ईमेल बता दीजिए श्रोताओं को।
2: जी बिल्कुल, ईमेल आईडी भी है हमारे पास, जिसके माध्यम से हमारे श्रोता जो है हमारे

0: जुड़ सकते हैं, ये है akashvanibaltal@gmail.com, akashvanibaltal@gmail.com। यहाँ पर आप जो है सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें जो है अपने सुझाव या अपने कोई विचार जो है या कोई दुविधा अगर है तो वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और टोल फ्री नंबर्स भी हैं श्रीनगर के लिए 1800-1807199, 1800-1807199 ये श्रीनगर के लिए है, और जम्मू के लिए 1800-1807198, 1800-1807198 ये जम्मू के लिए है।
1: जी हाँ श्रोताओं, आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, आप इस हेल्पलाइन नंबर जो हमने आपको दिया या सायका ने जो शेयर किया, आपको ईमेल या टोल फ्री नंबर, इनके ज़रिए आप हमारी टीम से जुड़ने की कोशिश कीजिए। हम आपके सुझावों को महत्व देते हैं ताकि हमारे प्रसारण को सक्षम बनाने में आप हमारे सहायक बनें।

अमरनाथ यात्रा पे आ रहे सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के रास्ते में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे तक जा सकता है, इसीलिए अपने साथ वूलन कपड़े लेकर चले। सफर के दौरान बारिश के आसार भी होते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला, रेनकोट, विंड शीटर और वाटरप्रूफ शूज भी साथ रखना जरूरी है। याद रहे कि अपना आईडी कार्ड, यात्री परमिट और इमरजेंसी पर्पस के लिए एक नोट साथ रखें, जिसमें आपके सफर की तारीख पे ही जाने वाले किसी और यात्री का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।

जुड़े हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी के साथ, जो आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम की संग। शरण के अपडेट्स के लिए आप बने हुए हैं हमारे साथ, और एक बजे तक का जो अपडेट हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, ये एक बजे तक 16,534 जो है भगत, उन्होंने बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाए हैं। उनमें पुरुष की संख्या रही है 12,606, महिलाएं 3,335, बालक 247, साधु 93, साध्वीज 36, ट्रांसजेंडर 1 और सुरक्षा कर्मचारी 156। जी हाँ, 156 जो है सुरक्षा कर्मचारी है, और कुल मिलाकर संख्या बनी है एक बजे तक जिन भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए 16,534। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनिए ये विशेष प्रसारण। और आपके साथ एक बार फिर हेल्पलाइन जो है, हम आपके साथ नंबर साझा करना चाहते हैं 9596990954। जी हाँ, 9596990954। और ईमेल आप नोट कीजिए, akashvanibaltal@gmail.com, akashvanibaltal@gmail.com। और टोल फ्री नंबर श्रीनगर के लिए 1800-1807-1999, और जम्मू के लिए 1800-1807-1998। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि पल पल के अपडेट्स हम आपके लिए

0: उसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। बस कुछ ही क्षणों में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार समाप्त करेंगे, बस जरा सा इंतजार।
1: यात्रियों को सूचित किया जाता है।
2: इस दिन आ रही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। साढ़े अगला प्रादेशिक बुलेटिन शामी 6 बजे। नमस्कार।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। सरकार ने आबनाए हुरमुस के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपये की इमदाद जारी की है। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल से मुतालिक इश्तिहारात हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुलुकारा तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में बहुत तेज बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने मगरबी एशिया महाजाराई में जंग बंदी के तनाजुर में अबनाए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। एक नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि कुदरती गैस की सप्लाई से मुतालिक इंजबाती ऑर्डर 2026 में तरमीम की गई है, जिसके तहत उन अहम इमरजेंसी दफात को हटा दिया गया है जिनकी रूह से सरकार को अंदरून मुल्क तैयार करदा कुदरती गैस और दरामद की गई LNG अलॉट करने को तरजीह हासिल थी। अबनाए हुरमुज के रास्ते LNG की खेप में रुकावट पड़ने के बाद इस साल मार्च में लाजमी अशिया से मुतालिक एक्ट के तहत ये इमरजेंसी ऑर्डर जारी किया गया था। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 इस महीने की पहली तारीख से नाफिज हो गया है। वजीर मौसूफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजकूरा मिशन के तहत रियासतों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की इमदाद मंजूर की और इसे जारी किया। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम MGNREGA की जगह विकसित भारत जी राम जी एक्ट को कामयाबी के साथ इख्तियार किया गया है। उन्होंने कहा कि MGNREGA पर अमल दरामद में 3 साल लग गए थे, जबकि विकसित भारत जी राम जी एक्ट पूरे मुल्क में सिर्फ 1 दिन में ही नाफिज कर दिया गया। जनाब चौहान ने कहा कि इस एक्ट के तहत अगले 5 साल के दौरान 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सरमाया लगाया जाएगा ताकि विकसित भारत के नजरिए की रफ्तार में तेजी लाई जा सके।
4: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का दौरा कल से शुरू हो रहा है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को तकवीत मिलेगी और इश्तराक के नए रास्ते भी खुलेंगे। आज जकार्ता में आकाशवाणी के साथ इंटरव्यू में इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे और ताउन के कई नए शोबे खुलने से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और दो बड़े मुल्कों के दरमियान इकतसादी राबते और ज्यादा मजबूत होंगे। जामे कलीदी साझेदारी

के बारे में सफीर मौसूफ ने कहा कि इस शराकतदारी के कई सुतून हैं, इनमें से एक दिफा और सिक्योरिटी है। इसके अलावा ताल्लुकात में और ज़्यादा इक्तिसादी सरगर्मियां भी शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जय शंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजारत ख़ारजा ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और मज़कूरा मुल्कों के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर इश्तिहारात में बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल और ज्यादती से मुतालिक मवाद के सिलसिले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सरकार ने इंस्टाग्राम को ये हुक्म दिया है कि उन सभी इश्तिहारात और मवाद को हटाया जाए जिनके जरिए बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत ने मेटा से 7 दिन के अंदर अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। सरकार इस बात का जायजा ले रही है कि आया मजकूरा प्लेटफॉर्म ने भारत के मुतालिका सेफ्टी रहनुमा उसूलों पर अमल किया है या नहीं। डिजिटल कवानीन के तहत भारत में फहाशी और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से वाबस्ता मवाद की तकसीम एक फौजदारी जुर्म है। इससे कबल वजारत ने इन इत्तलात का नोटिस लिया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा काबिल एतराज मवाद दिखाया गया है जिससे बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को बढ़ावा मिलता है। सरकार ने मेटा से जवाब तलब करने के लिए मुतालिका अहलकारों को हिदायत भी जारी की थी। छत्तीसगढ़ के मारूफ पंडवानी गुलुकारा और पद्म विभूषण से सरफराज तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। वो तवील अरसे से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने आज अलसुबह 3:15 बजे के करीब आखिरी सांस ली। अपनी पुरअसर आवाज़, स्टेज पर शानदार कारकर्दगी और गायकी के मुनफरिद अंदाज के सबब तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ पूरे भारत बल्कि बैन अलाक़वामी सतह पर भी एक नई शनाख्त दी।

भारतीय लोक आर्ट के लिए उनकी गैर मामूली और गिरां कद्र खिदमात के एतराफ़ में उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमेन डेकर और वजीर आला विष्णु देव साय ने भी तीजन बाई के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है और लोक रिवायात को महफूज रखने, नीज छत्तीसगढ़ की सकाफती विरासत को आलमी मंजरनामे तक ले जाने में उनके गिरां कद्र रोल की सताइश की है। डॉक्टर तीजन बाई की आखिरी रसूम दुर्ग जिले में उनके आबाई गाँव गनियारी में आज शाम पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज साबिक मरकज़ी वज़ीर रामविलास पासवान के योम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान को अवाम और मुल्क की खिदमत के तई उनकी लगन और अज़्म के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस साल सालाना अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हौसला अफजा रही है। यात्रा शुरू होने के पहले दो दिन के दौरान 32,313 अकीदतमंदों ने अमरनाथ गुफा में दर्शन किए। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने और कहीं कहीं इंतहाई मूसलाधार बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और औसत बारिश होने की पेशगोई की गई है। ख्वातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में पहुंची है, जबकि इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी और लगातार छठी कामयाबी हासिल की थी। खास खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने अबनाए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस एलएनजी की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस

0: मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि VBG रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
4: The significance is immense.
3: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है।

0: श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: देने देने
3: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
4: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
5: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
3: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी।

0: अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यात्रा पे आ रहे सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के रास्ते में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे तक जा सकता है, इसीलिए अपने साथ वूलन कपड़े लेकर चलें। सफर के दौरान बारिश के आसार भी होते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला, रेनकोट, विंड शीटर और वाटरप्रूफ शूज भी साथ रखना जरूरी है। याद रहे कि अपना आईडी कार्ड, यात्री परमिट और इमरजेंसी पर्पस के लिए एक नोट साथ रखें, जिसमें आपके सफर की तारीख पे ही जाने वाले किसी और यात्री का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
3: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालथल और FM पहलगाम की संग। श्रोतो, आपको बता दें, अगर आप दर्शन के लिए बालथल के छोटे मार्ग से जा रहे हैं तो आप ट्यून कीजिए FM बालथल 103.7 MHz, और अगर आप दर्शन के लिए पहलगाम के प्राचीन मार्ग से जा रहे हैं तो आप ट्यून कर सकते हैं FM पहलगाम 100.1 MHz। पल पल के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोतो, जहां प्रशासन की कोशिश रहती है इस यात्रा को सफल बनाने की, वहां हमारे अब यही प्रयास होता है कि आपके साथ जुड़कर आप तक अपडेट पहुंचाए। तो अपडेट लेकर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ भगवती नगर के जो बुनियादी पड़ाव बेस कैंप होता है वहां से हमारे साथ जावेद मेहराब जी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे अपडेट्स जानते हैं। जी जावेद साहब
1: जी, पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में शदीद गर्मी के बावजूद तीर्थ यात्रियों

का जोश और जज्बा कायम है। श्रद्धालुओं का जम्मू में प्रवेश करना लगातार जारी है। रेल और बसों के माध्यम से सैकड़ों यात्री लगातार यहाँ जम्मू पहुंच रहे हैं। रेल के माध्यम से जो तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं, उन्हें रेलवे स्टेशन पर भी पूछताछ कर रजिस्ट्रेशन और दूसरी यात्रा से जुड़ी प्रतिक्रियाओं से सूचित किया जाता है, ताकि किसी भी तरह से तीर्थ यात्रियों को कोई तकलीफ न हो। इस सिलसिले में शहर भर में जगह जगह पर कनेक्टिंग नंबर्स और उसके अलावा डूज एंड डोंट्स का जो बोर्ड है, जिसमें यात्रा के लिए आपको किन चीजों का ख्याल रखना है और यात्रा करने से पहले आपको क्या क्या जरूरी है यात्रा के लिए, इन सभी तरह की सूचनाओं को शहर भर में जगह जगह पर लगाया भी गया है और अलग से हेल्पलाइन सेंटर्स भी कायम किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स भी रखे गए हैं, ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस सिलसिले में इस बार तीर्थ यात्रियों के लिए ऑटो चालकों को खास तौर पर मीटरिंग भी की कराई गई है और मीटरिंग के तहत ही उन्हें चलना भी है, और उसके अलावा उन्हें बाजाबता एक अपना जो रेट कार्ड जो है वो कितना, कहाँ से उठते हो, कहाँ से निकलते हैं, पहले किलोमीटर में आपने क्या देना है, तो तीर्थ यात्रियों के लिए ये जो इंतजाम है ये लगातार जारी है। तो अभी तक जो है लगभग 20,000 से जायद श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वादी को भी जा चुके हैं और हर दिन श्रद्धालु दर्शन कर वापस जम्मू भी पहुंच रहे हैं, और यहाँ से वो न सिर्फ फिर जम्मू के विभिन्न मंदिरों या विभिन्न जो यहाँ पर तीर्थ स्थल है उनका भी दौरा करते हैं, वहां भी पहुंचते हैं, वहां भी पूजा अर्चनाओं में हिस्सा लेते हैं और उसके बाद अपने घर वापस लौटते हैं। तो ये सिलसिला पिछले 3 से 4 दिनों के बीच बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और इस सिलसिले में ये हफ्ता बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में आज जम्मू में एक बार फिर डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि तीर्थ यात्री सिर्फ निर्धारित सेंटर्स पर ही अपना पंजीकरण कराएं, क्योंकि कुछ शिकायतें मिली थी कि किसी स्थानीय या मैसेज के जरिए भी तीर्थ यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा का कहा जाता है, लेकिन वो सब आज डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि वो फेक है और किसी भी फ्रॉड में फंसने की तीर्थ यात्रियों को जरूरत नहीं है। आज उन्होंने कैटेगोरिक कहा कि जो रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बनाए गए हैं उन्हीं से वो रजिस्ट्रेशन करें। तो साथ में उनका ये खास तौर पर कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ही हर रोज तीर्थ यात्रा को रवाना किया जाता है और तमाम तरह जिसमें मौसम, ग्लेशियर और दूसरी परिस्थितियां हैं, क्योंकि ये जो तीर्थ यात्रा है बाबा भोलेनाथ की, ये कुदरत के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ नेचर भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी है, दुर्गम पहाड़ियां भी है, तो हर तरह का मौसम और हर तरह की परिस्थितियां हैं। तो उन परिस्थितियों को देखकर ही सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसी के तहत बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों को भेजा जाता है, ताकि किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटा भी अच्छी तरह से जा सके और तीर्थ यात्रियों को किसी भी लेवल पर कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा कि टोकन देने के बाद तीर्थ यात्री दूसरी मजहबी स्थानों पर भी इजाजत होती है उनको जाने की, जब टोकन दिया जाता है, ताकि वो इंतजार भी उनके लिए टाइम बहुत होता है और इस बीच जम्मू के जो तीर्थ स्थल है वो उनका दौरा कर सकते हैं, बाजारों में जा सकते हैं, वहां शॉपिंग करनी हो वो कर सकते हैं। तो एक तरीका है ये चलने का। उसके अलावा डिविजनल कमिश्नर का कहना था कि तत्काल रजिस्ट्रेशन का उनके पास बहुत कम कोटा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का पहले क्या था कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं थी तब तक सारी चीजें ओपन थी, लेकिन जब निर्धारित हो गई हर चीज तो नेचुरली है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, किस तरह से वो तीर्थ यात्रियों को यहाँ जो पहुंच रहे हैं उन्हें ना तो तकलीफ हो, और ये कि जब तक उनका वक्त मिलेगा तीर्थ यात्रा पर जाने का, तब तक उन्हें दूसरी जगहों का भी उन्हें दिखाया जाए, वहां जाने के लिए उनके लिए व्यवस्था की जाए, वो सारी चीजें भी हैं। उसके अलावा मैं बताऊं आपको कि ज्यादातर जिन तीर्थ यात्रियों की रजिस्ट्रेशन हुई है उनके मुताबिक उन्हें पहले इजाजत दी जाएगी तीर्थ यात्रा पर जाने की। उसके अलावा डिविजनल कमिश्नर के मुताबिक 9 तारीख तक तीर्थ यात्रा का टोकन वो दे चुके हैं। अब जो भी तीर्थ यात्री यहाँ
पहुंचेगा या पहुंच रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों में लोग पहुंच रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि वो कुछ दिन का वक्फा देकर, क्योंकि जो अभी नहीं पहुंचे हैं उन तक ये बात पहुंचे कि कुछ दिन का वक्फा देकर

0: पर वो यहाँ पहुंचे ताकि उनको बाबा बर्फानी के दर्शन करने के दौरान यहाँ ज्यादा तकलीफ का सामना ना
1: ना
0: हो, क्योंकि
1: करनी
0: जब आप
1: पड़े।
0: सफर पर निकलते हैं तो एक नेचुरली होता है कि आप एक दूसरी परिस्थिति में होता है हर एक इंडिविजुअल, तो उसको तकलीफ ना हो। अगर वो यहाँ 3 दिन रुकेगा, यहाँ दूसरी चीजों का फिर ख्याल रखना है, हर चीज का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सुरक्षा का, हर चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो नए आ रहे तीर्थयात्री है उन्हें अभी 9 तारीख तक फिलहाल रुकना चाहिए, ताकि
1: अच्छा
0: वो 9 तारीख के बाद जैसे ही पहुंचेंगे उनकी बारी भी जल्दी आएगी और
1: हाँ
0: उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए बेहतर प्लान भी मिलेगा, और जब वो प्लान करके यहाँ पहुंचेंगे। और उन्होंने खास तौर पर कहा कि तीर्थ यात्री अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये एक बड़ी बात जो उन्होंने आज कही कि तीर्थ यात्री जो रजिस्ट्रेशन जिनकी हो चुकी है उन्हें हमेशा अपना कार्ड जो है वो अपने पास रखना चाहिए, ताकि सुरक्षा को लेकर की जाने वाली कार्रवाई या फ्रिस्किंग या दूसरी चीजें या नाकों पर रोकना, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की तकलीफ ना
1: तकलीफ
0: हो,
1: ना
0: उन्हें
1: हो,
0: वो कार्ड अपने पास रखना
1: रखना
0: चाहिए
1: चाहिए।
0: ताकि जो सुरक्षा कर्मी है उनके लिए भी आसानी हो उन्हें आइडेंटिफाई करना। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां तीर्थयात्रियों को बेहतर यात्रा कराने के लिए तत्पर है। याद रहे कि सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से सुनिश्चित कराने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। ये उन्होंने प्रोटो कहा कि बिल्कुल सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई भी चूक और किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बात वो ना इजाजत देते हैं उसकी, और ना ही वो उस पर कंप्रोमाइज करेंगे। इसलिए तीर्थयात्रियों को कॉपरेट बहुत अच्छी तरह करना होगा ताकि सुरक्षा कर्मी जो 24 घंटे ड्यूटी पर है उनके लिए भी ड्यूटी करना आसान
1: आसान
0: हो।
1: हो, बिल्कुल
0: जी जी
1: बिल्कुल।
0: मौसम के हवाले से मैं बताऊं तो यहाँ जम्मू में लगातार शदीद धूप और उमस चल रही है, जिसकी वजह से तीर्थयात्रियों को तकलीफ भी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जोश और जज्बा बराबर है, जारी है, तीर्थयात्री लगातार आ भी रहे हैं। और यहाँ पर जो इंतजाम किए हैं, लगभग 20 ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए हैं, इसीलिए किसी भी तरह की ह्यू एंड क्राई नहीं है, लोग बिल्कुल पहुंच रहे हैं, उन्हें ट्रांजिट कैंप्स भी ले जाया जा रहा है। और जो यहाँ दूसरे तीर्थ स्थान है जम्मू के अलावा, माता वैष्णो देवी का एक बहुत बड़ा जिसपे साल भर तीर्थयात्री आते हैं, वहां के लिए भी सरकार चाहती है कि तब तक जब तक उनकी बारी आए, जब तक वो टोकन ले, जब तक रजिस्ट्रेशन हो सके, तब तक तीर्थयात्री माता वैष्णो देवी के यात्रा भी करें, और यहाँ के जो शिव स्थल है, शिव मंदिर स्थल है, पूजा स्थल है, वो या वहां भी जाए, और ताकि शहर में भी एक जो एक एक्टिविटी है तीर्थ यात्रा को लेकर आम लोग उसके साथ जुड़ सके। उसके अलावा यहाँ के जो बाजारों में, यहाँ की जो निजी संस्थाएं हैं उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए हर जगह पर पानी, खाने पीने का भरपूर इंतजाम भी रखा है, शौचालयों का खास तौर पर इंतजाम रखा गया है, खास तौर पर गाइड भी कर रहे हैं, लोकल लोग उनको गाइड भी करते हैं, तो एक अच्छा
1: माहौल
0: अनुभव
1: बना
0: उनके
1: हुआ
0: लिए भी
1: है,
0: है,
1: बिल्कुल
0: माहौल भी अच्छा बना है, और बहुत अच्छी तरह से ये तीर्थ यात्रा अभी तक चल रही है।
1: चल
0: जी
1: रही है। तो हमारी हमारी भी यही मनोकामना है, आगे भी यह सफलता के साथ आगे बढ़ते रहे और बाबा भोले के दर्शन करें। और आपने ये बहुत ही अच्छी बात बोली कि यहाँ पे हमारे जो है प्रशासन ने, या जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि 9 जुलाई तक जो है रजिस्ट्रेशन की गई है, और उसके बाद थोड़ा सा वक्फा देकर आगे जो आने वाले हैं उनको आगे जाने की जो है परमिशन देंगे, लेकिन तब तक जो 9 तक जो रजिस्ट्रेशन की हुई है फिलहाल ही को जाने देंगे। ये बहुत ही
0: बिल्कुल
1: अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे तो हमारे तीर्थ यात्री जो है उनको किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही कहा
1: बहुत
0: आपने।
1: ही
0: इसीलिए ये खास तौर पर है क्योंकि मैंने अपनी पहली रिपोर्ट में भी, सुबह की रिपोर्ट में ये बताया कि हर दिन समीक्षा होती है तीर्थ यात्रा की, हर दिन नए प्लान के साथ सुरक्षा और बाकी सारी चीजों का अध्ययन होता है ताकि तीर्थ यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो। तो इसके लिए सरकार भी कर रही है, लोग भी अपनी तरफ से, निजी संस्थाएं भी बखूबी अपना रोल निभा रही।
1: जी जावेद साहब, हम तो यही कहेंगे हमारे जो प्रशासन है ये हर कदम जो, या जो भी एक एक दिन वो नया नया कुछ अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, ये सब तीर्थ यात्रियों के लिए है, उन्हीं की मतलब उनके आराम के लिए है, ताकि उनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो जाए। इसीलिए ये ऐसा कुछ जो भी हमारे कोशिश या प्रशासन की कोशिश होती है ये सिर्फ उनके आराम के लिए है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: बहुत
1: इस
0: शुक्रिया,
1: रिपोर्ट के लिए। धन्यवाद।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओ, ये थे जम्मू बेस कैंप से हमारे रिपोर्टर जावेद मेहराब।

0: श्रोताओं बने हुए आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग, और इस प्रसारण में हम जो हमारी यही कोशिश रहती है, यही प्रयास रहता है कि आप तक यात्रा से जुड़ी हर जानकारी जो है आप तक पहुंचे। और इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद तस्कीन बानिहाल से। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ताज़ा जानकारी है इनके पास राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर और यात्रा और यात्रियों को लेकर। जी तस्कीन साहब
1: जी, शुक्रिया। श्री अमरनाथ यात्रा बिल्कुल जोश और खरोश के साथ, जज्बे के साथ आज चौथे रोज भी जारी है और आज भी 6,700 से जायद श्री अमरनाथ यात्री दोनों रूट से, जो बालतल और पहलगाम का रूट है जम्मू से, इन रूटों की तरफ

रवाना किए गए और वापस जो दर्शन करके श्री अमरनाथ यात्री आ रहे थे तो वो भी कुछ तो बनहाल क्रॉस कर गए, जो पहलगाम पहले ही आता, थोड़ा पहलगाम की यात्रा क्योंकि नजदीक है तो वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि जो वालतल वाला ट्रैफिक है वो अब थोड़ा सा कायम कर रहा है चंद्रकूट में, उसके बाद उन्हें भी जम्मू की तरफ रवाना किया जा रहा है। आज जो सुबह से ही जो मौसम हल्का अबरालू था, इस वक्त भी बादल है लेकिन धूप भी खिली खिली खिली है, लेकिन मजमूई तौर कहेंगे तो मौसम पिछले चंद एक रोज से मतलब मौतदिल कहेंगे, खुशगवार कहेंगे, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही इस इलाके में कहेंगे, जो रामत बानहाल का सेक्टर है, क्योंकि हल्की हल्की बारिशें कई बार हुई पिछले चंद रोज के दौरान, और जिस वजह से जो सफर कर रहे लोग तो उनको जो ये जो खुशगुवारियत का महसूस होता है, जो मौसम जो खुशगुवार बना हुआ है। इस दौरान आज सुबह ये जो एक यात्रा गाड़ी जो बालतल के रूट से जा रही थी तो उसको ये जो सुबह के वक्त में उसको कुछ फॉल्ट आया यहाँ नाशरी के आसपास, तो उसके बाद इस गाड़ी को वो ठीक करने की कोशिश की गई, मरम्मत करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में जो वहां पर हुकाम थे जो बाज़ाब्ता तौर पर गाड़ियां रिजर्व रखी गई हैं, अगर किसी सूरत में कोई गाड़ी खराब हो जाती या कोई मसला पैदा होता तो इस बस को फिर रिप्लेस किया गया। ये उत्तर प्रदेश नंबर की गाड़ी थी जो यात्रा में शामिल थी, तो उसे फिर तब्दील करके एक नई बस जो इसमें यात्री थे तो उन्हें दी गई, तो उन्हें वहां से फिर यानी नाशरी दलवास के इलाके से रवाना कर दिया कश्मीर की तरफ। तो मजमूई तौर पर जो जोश और जज्बा है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है, जो लोग आ रहे हैं भारी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो इस दौरान जो अनरजिस्टर्ड यात्री है और टूरिस्ट से तो उनका भी बराबर आना जो जारी है कश्मीर की तरफ, लेकिन उनके लिए जो टूरिस्ट ये जो यात्री हैं अनरजिस्टर्ड यात्री हैं उनसे क्लियर कट जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ बानहाल में भी दी जा रही थी, जो गाड़ियां यहाँ पर थी जो लांबर ग्राउंड है जहाँ पर यहाँ जो यात्रा के लिए जो लंगर कायम किया गया वहां पर आज सुबह ही पुलिस ये जो दिन भर ऐलान कर रही थी, जो गाड़ियां जा रही उनसे कहा जा रहा था कि जो रजिस्टर्ड हो वही कश्मीर की तरफ जाए और रजिस्ट्रेशन के बाद ही जाए, और जिनको होटल्स की बुकिंग हो तो वो उसके बाद ही जाए, होटल बुकिंग पहले करें क्योंकि बहुत ज्यादा रश देखने में आ रहा है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट और अमरनाथ यात्री जो है वादी कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए ये हदायत उन लोगों को जारी की गई है। इस दौरान जो ट्रैफिक का शेड्यूल रहता है हाईवे पर श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद, उसमें ये जो यात्री जम्मू से कश्मीर की तरफ आना चाहते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो या टूरिस्ट हो, उनके लिए ये खबर कि वो 2 बजे के बाद उन्हें चंद्रकूट रामबन से आगे

0: होगा ज्यादा, इसलिए जो भी सफर कर रहे हैं तो उनको ये जहन नशीन करना चाहिए कि 3 बजे के बाद उन्हें बानहाल काजीगुंड टनल पार करने की इजाजत
1: नहीं
0: नहीं दी
1: मिलेगी
0: जाती है।
1: जी।
0: तो इस दौरान जो ट्रैफिक, जो मुसाफिर ट्रैफिक होता है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, जम्मू से कश्मीर की तरफ और कश्मीर से जम्मू की तरफ, जम्मू से कश्मीर की तरफ नगरोटा से 7 बजे से 12 बजे तक मुसाफिर गाड़ियों को कश्मीर की तरफ आने की इजाजत दी जाती है, जबकि जो कश्मीर से मुसाफिर ट्रैफिक जम्मू जाना चाहते हैं उन्हें 11:30 के बाद ही काजीगुंड से जम्मू की तरफ बढ़ने की इजाजत दी जाती है। इसके अलावा जो ट्रक होते हैं, जो माल गाड़ियां होती हैं, तो उनके लिए अल्टरनेट डे का फिक्स किया गया है, यानी एक दिन ट्रक चलेंगे और एक दिन नहीं चलेंगे। तो उसी के तहत आज जो कश्मीर से ट्रकों को जम्मू की तरफ छोड़ा जा रहा है और जम्मू से आज कोई भी ट्रक कश्मीर की तरफ नहीं आएगा, और कल जो टर्न होगी वो यानी मुतबादल भी अल्टरनेट डेज रखे गए हैं, तो कल जो जम्मू से ट्रकों को चलने की इजाजत होगी इशारा पर। जी
1: जी तस्कीन साहब, आपका इस विवरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
0: शुक्रिया।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, आपको बता दें कि नए नए साथी हमारे साथ स्टूडियोज़ में जुड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आपका साथ रहे तो ये भी बहुत मेहनत करके आगे बढ़ेंगे और आशा है अच्छा करते हैं और अच्छा करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल पजमान हमारे साथ जुड़ गई है और आपके साथ ये कुछ बात करना चाहेगी, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहेगी। जी पजमान,
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। क्षण क्षण की अपडेट्स के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पे आ रहे सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के रास्ते में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे तक जा सकता है, इसीलिए अपने साथ वूलन कपड़े लेकर चलें। सफर के दौरान बारिश के आसार भी होते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला, रेनकोट, विंड शीटर और वाटरप्रूफ शूज भी साथ रखना जरूरी है। याद रहे कि अपना आईडी कार्ड, यात्री परमिट और इमरजेंसी पर्पस के लिए एक नोट साथ रखें, जिसमें आपके सफर की तारीख पे ही जाने वाले किसी और यात्री का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहाँ का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
1: तो बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के संग। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एडवाइजरी सभी तीर्थ यात्रियों के लिए, जिन यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है उन्हें श्रीनगर की तरफ आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रजिस्टर्ड यात्री और टूरिस्ट जो श्रीनगर जा रहे हैं, अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप और होटल बुकिंग रिसिप्ट हमेशा साथ रखें, ताकि पुलिस चेकिंग पॉइंट्स पर वेरिफिकेशन के लिए देख सके।
2: जी बिल्कुल शाहिन जी, और ये भी इन जो ये एडवाइजरी है इसमें ये भी शामिल है कि ये चेकिंग यात्रा जो है, यात्रा को सुविधाजनक बनाने और सुरक्षा बनाए रखने और ट्रैफिक को सही तरीके से मैनेज करने के लिए की जा रही है, और सभी लोगों से निवेदन जो है किया जा रहा है कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स साथ रखें और चेकिंग पॉइंट्स पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज के लिए दिए गए निर्देशों का पालन भी करें।
1: जी, जम्मू और कश्मीर पुलिस सभी यात्रियों और टूरिस्ट से अपील करती है कि अपनी यात्रा की पहले से ही सही प्लानिंग करें और एक सुरक्षित, शांत और बिना किसी परेशानी के श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के लिए पूरा सहयोग दें।
2: और यहाँ पर अपने हम इन अपने श्रोताओं को ये भी कहना चाहेंगे कि ड्यूकॉम जम्मू जो है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि सिर्फ निर्धारित सेंटर्स जो हैं वहीं पर जाकर अपना पंजीकरण कराएं और सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस जो हैं उनका पालन करें, ताकि ये यात्रा जो है बिना किसी बाधा के चलती रहे और सफलतापूर्वक अंत को पहुँचे और हमारे सारे तीर्थ यात्री जो है अपने अपने क्षेत्रों, अपने अपने घरों तक जो है प्रसन्नतापूर्वक पहुंचे।

0: श्रोताओं बने हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी 2026 के संग। पल पल के अपडेट्स के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। अभी हमारी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं श्रीनगर पांथा चौक के ट्रांजिट कैंप से इमरान नायकू साहब। जी इमरान
1: जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह से हम कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं कि श्रीनगर से जो पांथा चौक एरिया में ट्रांजिट कैंप कायम किया गया है, यहाँ से पहले दिन से ही यात्रियों की जो आमद है, यात्रियों का जो अराइवल है वो जारी है और यहाँ से डिपार्चर भी यात्रियों का हो रहा है। और आज दिन की बात करें तो आज सुबह से यहाँ यात्रियों के अलग अलग जत्थे जो है वो अमरनाथ जी गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए गए। दोनों जो बालतल

0: और नुनवान बेस कैंप के जो हमारे दो रूट्स हैं, रास्ते हैं दोनों तरफ से। और चूंकि आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से भी अमरनाथ जी यात्रियों का जत्था कश्मीर वैली वारिद हुआ है, रवाना हुआ है, यहाँ पहुंचा है, तो वो भी यहाँ उनमें से भी कई सारे जो यात्री हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, जिनमें साधु साध्वी और कुछ मर्द खवातीन और कुछ बच्चे भी शामिल हैं और इसमें कुछ ट्रांसजेंडर्स भी है। ओवरऑल आज के दिन के हवाले से बात करें तो आज भी श्रीनगर में मौसम बिल्कुल सुहाना है, खुशगवार है और इस साफ और साजगार मौसम के बीच में यात्रियों को यहाँ से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जा रहा है और किया गया है, और साथ ही यात्री भी यहाँ पहुंच रहे हैं। और जैसे हम मुसलसल पहले दिन से बता रहे हैं कि यहाँ इस ट्रांजिट कैब में अमरनाथ जी यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं, हर तरह के जो इंतजाम है वो रखे गए हैं, वो चाहे लंगर्स का अहतमाम हो, वो फिर यहाँ पीने के पानी की हम बात करें, या फिर मुख्तलिफ जो स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं और साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के अलावा जो सैनिटेशन का यहाँ निज़ाम है और हर तरह की, और साथ ही यहाँ यात्रियों को के लिए एक काउंटर सेट जो है वो भी एस्टेब्लिश किया गया है, ताकि अगर उन्हें कोई शिकायत हो या किसी किस्म की कोई मदद की ज़रूरत हो तो वो उस पर जो है वहाँ पर अपनी हेल्प जो है हासिल कर सकता है, असिस्टेंस ले सकता है। साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी मुसलसल कहा जा रहा है, जैसे कि कल और सुबह भी हमने अपडेट किया था कि बैक टू बैक यहाँ कश्मीर में मीटिंग्स हो रही है और ऑफिशियल्स यात्रियों से मिल रहे हैं, और जैसे आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यात्रियों के साथ जो है मुलाकात की है, ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की है यात्रा को लेकर, और कल भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से मीटिंग की गई, इसके अलावा ड्यूकाम साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और यात्रियों से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही अपील की जा रही है, यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो गवर्नमेंट या ऑफिशियल्स की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, उस पर चलें और उन गाइडलाइंस के मुताबिक ही जो है वो यात्रा के लिए आएं और यात्रा के दौरान अपना जो सफ़र है वो जारी रखें। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिसमें मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी के जो इंस्टीट्यूशन हैं या जो इदारे हैं वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वहीं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो यूटी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरीके से, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो हमारी सिविल इंतजामिया है वो अपने तरीके से खिदमत दे रहे हैं, और हर गवर्नमेंट का जो महकमा है उसके जो आला अफसरान है, जो उनका जो अमला है या जो उनके जो ऑफिशल्स है वो खिदमत दे रहे हैं। और साथ ही श्रीनगर से ही पूरी यात्रा को जैसा कि हम बता रहे हैं कि हर साल की तरह इस साल भी यहाँ इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से निगरानी की जा रही है, पूरी यात्रा को सर्वेलेंस की जा रही है दोनों रूट्स पर, इवन के जो गुफा है वहां तक यात्रियों के हर जो यात्रा जो सफर कर रहे हैं उस पर कड़ी निगरानी की जा रही है, ताकि इस यात्रा को जो है पुरअमन और पुरासन और पीसफुल मैनर में जो है इख्तिताम तक पहुंचाया जाए। सो एज ऑफ नाउ श्रीनगर में जहाँ हर तरह की सुविधाएं रखी गई है, हर तरीके की फैसिलिटीज रखी गई है, और एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो यात्रियों से मिल रहे हैं, वो उनकी बात सुन रहे हैं, वहीं लोकल्स भी यात्रियों से बार बार जो मैं जो जैसे मैंने कल भी कहा था कि उनका इंटरेक्शन हो रहा है, और हर तरह की जो वो कल्चरल बॉन्डिंग है, जो इंटीग्रेशन है उसको कहीं ना कहीं इस यात्रा के जरिए से शेयर करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। सो आज के दिन के हवाले से भी इस बेहतर और एक सुहाने मौसम के बीच में अमरनाथ जी यात्रा श्रीनगर से यात्रियों को रवाना किया जा रहा है, यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं और उनका यहाँ पे इस्तकबाल भी किया जा रहा है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपकी रिपोर्ट के लिए। तो श्रोताओं ये थे श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से इमरान नाइको।

0: जी श्रोताओं, आपकी यात्रा को सुखद बनाने के लिए हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता जुड़ते हैं, जो पल पल की जानकारी जो है हम तक पहुंचाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ संवाददाता गांदरबल से रहीम रिजवान जुड़ चुके हैं, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ ताज़ा जानकारी और क्या कुछ स्थिति है वहाँ पर गांदरबल एरिया में। जी रिजवान साहब
1: जी, खुशगवार मौसम के बीच बालतल मार्ग से श्री अमरनाथ जी यात्रा धार्मिक रूप से जारी है। बाबा बर्फानी के भक्त जोश और जज्बे के साथ पवित्र गुफा जाकर प्रार्थना करते हैं तथा शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंच रहे हैं। इस बीच आज तीसरे रोज 14,257 यात्री बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। सुबह 10 बजे तक दुमेल कंट्रोल गेट पार करने वाले इन श्रद्धालु में 11,291 पुरुष, 2,467 महिलाएं, 145 बालक बालिका, 33 साधु, 31 साधियां एवं 290 सुरक्षा कर्मी भी थे। दुमेल कंट्रोल गेट पर RFID कार्ड हासिल करके जय भोलेनाथ का नाद करते हुए श्रद्धालु गुफा की ओर निकल पड़े। ऊंचे पर्वतों के बीच पवित्र सफर जारी रखते हुए श्रद्धालु पंचतनी, लवर केव एवं अपर केव तक पहुंच गए।
0: जी,
1: यात्रियों का ये सफर सफल बनाने में जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, BSF, CRPF, SSB, ITBP, NDRF, SDRF, वॉलंटियर्स तथा अन्य एजेंसियों के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के अधिकारियों का अहम योगदान है, जो हर वर्ष तीर्थ यात्रा को संपूर्ण तरीके पर सफल बनाने में अहम किरदार निभाते हैं। इस दौरान देश के विभिन्न भागों से आने वाले श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा पहुंचकर प्रार्थना करने से आध्यात्मिक शांति मिलती है। इधर सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज 2 बजे तक 840 यात्री शिवलिंगम का दर्शन करके बालतल बेस कैंप पहुंचे, जिनमें 720 पुरुष, 90 महिलाएं, 8 बालक बालिका, 5 साधु, 3 साधियां एवं 14 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। दर्शन करने के बाद यात्रियों का पवित्र गुफा से बालतल वापस पहुंचने का ये सिलसिला देर रात गए तक जारी रहेगा। इधर मुख्तलिफ वाहनों में सवार जो यात्री आज सुबह सवेरे बालतल बेस कैंप से जम्मू की तरफ रवाना हुए, वो जम्मू पहुंचने वाले होंगे। इसी तरह प्रशासन की ये कोशिश रहती है कि घाटी आगमन होने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित पवित्र गुफा तक पहुंचा जाए एवं दर्शन करके वापस अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना किया जाए। अलबत्ता प्रशासन के द्वारा बार बार यात्रियों को ये सूचना दी जाती है कि वे पंजीकरण किए बगैर बालतल का रुख न करें, क्योंकि बिना RFID कार्ड किसी भी यात्री को गुफा जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छोटा वो आपको ये भी बताते चलें कि श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर यात्रा कॉन्वॉय बिना खलल जारी है तथा यात्री वाहनों को राजमार्ग पर तरजीह बुनियादों पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। इस बीच किसी भी प्राइवेट या सरकारी वाहन को आगे पीछे या दाएं बाएं चलने की इजाजत नहीं दी जाती है। जी
0: जी रिजवान साहब, आपने ये जानकारी तो दे दी। बहुत ही जो है आपका भी प्रयास रहता है इसमें कि आप जो है क्षण क्षण की जानकारी हमारे यात्रियों तक पहुंचाएं। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप के इस एरिया में इस वक्त मौसम के हालचाल कैसे हैं।
1: मौसम आज सुबह सवेरे ही खुशगवार था और इस वक्त भी काफी गर्मी है, तो बालतल में भी काफी गर्मी इस वक्त है और मौसम बिल्कुल खुशगवार है। बीच बीच में ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो है उनको राहत मिलती है और सुकून मिलते हैं। वो इसका आनंद लेते हुए गुफा की तरफ रवाना हो रहे हैं और दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंचते हैं। जो ही वो बालतल बेस कैंप पहुंचते हैं, अगर हम ट्रांजिट कैंप मैनीगाम पे जो रात कायम पजी रहते हैं यहाँ पे उसकी बात करेंगे, तो शाम के वक्त एक सुहाना मौसम होता है, हवाएं चलती हैं और खुशगवार मौसम का आनंद लेते हुए ये यात्री बिल्कुल बाहर रहते हैं। कभी कभार ये भंडार पे जो यहाँ लगे हुए हैं, लंगर लगे हुए हैं, वहाँ से खाने पीने की चीजें जो है वह हाथ में लेके, कॉफी हो, चाय हो या और कोई खाने की चीजें या मिठाई यहाँ पे उनको दी जाती है, वो हाथों में लेके बाहर बैठते हैं कुर्सी लगा के, तो इस खूबसूरती इस रानाई का वो आनंद लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं उनके साथ हमने बात की है तो उन्होंने यही कहा है कि ये वाकई तौर स्वर्ग है, जन्नत बेनजीर है और यहाँ की खूबसूरती देखकर वो झूम उठते हैं और चाहते हैं कि हम यही रहेंगे, लेकिन वक्त कम है क्योंकि वो यात्रा पे आए हैं।

0: तीर्थ यात्रा पे आए हैं, लिहाजा उनको वापस जाना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जो तीर्थ यात्री हैं ज़्यादातर गर्म क्षेत्रों से आते हैं, फिर यहाँ का मौसम तो वहाँ से बहुत ही अलग है, तो इस मौसम का वो आनंद लेते हैं और इसी आनंद में अपनी ये पवित्र यात्रा जो है इसको पूर्ण करते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विवरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रोताओं, ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता गांधरबल से रहीम रिजवान, जिन्होंने जो है ये भी बताया कि प्रशासन भी इसी प्रयास में है कि ये यात्रा जो है बिना किसी बाधा के चलती रहे, सुरक्षा पूर्वक चलती रहे और सुरक्षा पूर्वक ही जो है अपने समापन को पहुंचे।

0: श्रोताओं, शनशन के अपडेट्स के लिए हम आपके लिए यहाँ उपस्थित रहते हैं और अभी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहलगाम से एस तारिक जी। तारिक
1: बिल्कुल जी, श्री अमरनाथ जी यात्रा आस्था उत्साह और सफलता के साथ बिल्कुल साथ जारी है। आज पहलगाम के ननवन आधार शहर से रोजाना रवाना हुए श्रद्धालु शिशनाग और पंचतरणी पहुंच चुके हैं, जहां वो रात भर विश्राम करेंगे और कल सुबह पूजा शिवलिंग के दर्शन का पुण्य हासिल करेंगे। इधर शिशनाग और पंचतरणी में रात्रि विश्राम करने वाले हजारों श्रद्धालु आज पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। दर्शन की बात चली तो आज को मैं ये भी बताता चलूं कि पवित्र गुफा में अब तक 3 दिनों बाद के दौरान दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 50,000 तक पहुंच चुकी है और दर्शन का क्रम शाम 7 बजे तक निरंतर जारी रहेगा। ये संख्या पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। इस बीच आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने पहलगाम के ननवन बेस कैंप का दौरा करके जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सीनियर सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ एक अहला सतही समीक्षा बैठक की सदारत की। बैठक में यात्रियों की आवाजाही, सुरक्षा व्यवस्था, रहाइश और सुविधाओं या रजिस्ट्रेशन की स्थिति और दीगर लॉजिस्टिक बंदोबस्त का विस्तार से जायजा लिया, ताकि यात्रा को सुरक्षित, संपोषित और सुचारू रूप से जारी रखा जा सके। इधर जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 6,721 श्रद्धालुओं का नया जत्था गांधी पहुंच चुका था। ये जत्था लगभग दोपहर 12 बजे काजीगुंड ट्रांजिट कैंप भी पहुंचा, जहां से इसे अलग अलग दलों में बालतर और पहलगाम के लिए रवाना किया गया। प्राचीन रूट पहलगाम मार्ग के लिए 139 छोटे बड़े वाहनों में 4,121 श्रद्धालुओं का जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना किया गया। इनमें 2,915 पुरुष, 867 महिलाएं, 275 साधु, 61 साधुइया और 13 बालक शामिल थे। ये आज दोपहर को ननवन आधार शिविर पहुंच गए हैं। प्रशासन के ओर से ननवन बेस कैंप शिशनाग और पंचतरणी में यात्रियों के विश्राम, भोजन, पीने के जल और सेहत से जुड़ी सभी सुविधाएं बराबर उपलब्ध कराई गई है। हर पड़ाव पर सरकारी और गैर सरकारी स्वच्छ और स्वच्छता के मानकों पर आधारित लंगरों में यात्रियों की सेवा पूरे आस्था के साथ जारी है।

0: ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच कहीं मदम तो कहीं गूंजती हुई शुभजनों की धुन और बम बम बोले के जयकारों से पूरा वातावरण भक्ति रस में डूबा हुआ है। और अब तक जिन भी शिवभक्तों से हमारी बात हुई है वो प्रशासन और शांति और लोकल लोगों की जो अपनी सेवा है से बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। वो यात्री की सभी व्यवस्था पर वो संतोष व्यक्त कर रहे हैं। जी
1: तारिक साहब, हमें बताइए अभी केव के पास मौसम कैसा है?
0: बिल्कुल, मौसम बिल्कुल ठीक है। तकरीबन जो मैं आपको बता दूं 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का मौसम है, लेकिन जो इसमें धीमी सी जो हवाएं चलती है, जो हवा में नमी है वो बराबर है, इससे ज्यादातर लोगों में वो गर्मी की तमाज़त महसूस नहीं हो रही है। सुनिए, मैं बता दूंगा इस वक्त बिल्कुल खुशगवार मौसम है।
1: बिल्कुल, हमारे यात्री जो हैं वो तो गर्म एरिया से आते हैं और यहाँ आकर वो इस मौसम का आनंद लेते होंगे, ऐसी हमारी आशा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज है कि बाहर की जो धूप और तमाजत है उससे बचने के लिए जो उन्हें जब यहाँ कश्मीर वादी या घाटी के जो हवाएं मीठी हवाएं मिलती है, अगरचे उसमें गर्मी भी होती है लेकिन जो सर्द हवाएं साथ चलती है, खासकर वो ऊंचे पर्वतों की जो हवाएं आती है उससे वो बहुत सुकून
1: महसूस करते हैं। बिल्कुल,
0: अपने जो इबादत में है वो, जो अपने जो भजन में है वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं।
1: और हम यूं भी कह सकते हैं अगर उनको कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़े लेकिन जिस काम के लिए वो आ रहे हैं यहाँ पे आए हैं यहाँ पे बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए, तो वो जो श्रद्धा उनके दिल में है, उनके हृदय में है, उस श्रद्धा को लेकर उस उनको किसी चीज की जो है कमी भी महसूस नहीं होती होगी, क्योंकि उनका तो एक ही ये होता है यहाँ आने का कारण कि हम सिर्फ बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये जो यात्रा है, ये आस्था, ये सफलता और आस्था के एक दरमियान एक चीज होती है जो रूह को टच करती है, उस टच की वजह से उन्हें अगर कठिनाइयां भी हो
1: जी,
0: तब भी उन्हें महसूस नहीं होता है। ये एक रूहानी मामला है, ये जो ये यात्रा है ये एक रूह की गिजा है और इस गिजा के लिए उन्हें किसी भी कठिनाई से कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो इंतजामिया है, जो प्रशासन है, उन्होंने किसी भी यात्री को जरा भर भी कोई परेशानी हो उसका सदभाव किया है, कोई परेशानी ना होनी चाहिए, जिसके लिए आज भी हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इसी चीज को लेके पहलगाम आए और वहाँ एक बैठक की है। बैठक के दौरान उन्होंने सभी जो अधिकारी है, जो आला अफसर है, उनसे ये कहा है कि किसी भी तौर पे जरा भर भी किसी भी यात्री को कोई परेशानी
1: नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रशासन जो है वो हर साल ज्यादा से ज्यादा इंतजाम करते हैं इनकी जो है, जो इनको कोई भी कठिनाई ना हो इसी सिलसिले में वो इंतजाम कर रहे हैं ताकि हमारे जो यात्री है अच्छे से अपनी यात्रा कर सके, इनकी रास्ते में कोई भी कठिनाई ना हो, कोई भी किसी चीज की कमी ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, ये थे पहलगाम से हमारे संवाददाता एस तारिक।

0: आप समाप्त कर रहे हैं विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा। श्रोताओं, आपको बता दें, अगर आप दर्शन के लिए बालतल के मार्ग से जा रहे हैं तो आप ट्यून कर सकते हैं FM बालतल 103.7 MHz, और अगर आप पहलगाम के मार्ग से जा रहे हैं तो आप ट्यून कर सकते हैं FM पहलगाम 100.1 MHz।
1: जी पजमान, मैं भी यहाँ पे अपने श्रोताओं के साथ एक अपडेट साझा करना चाहती हूँ। जी श्रोताओं, आज दोपहर 2 बजे तक हमारे 17,908 तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन पाए हैं। संख्या की बात करें, पुरुष की संख्या रही है 13,387, महिलाएं 3,925, बालक 277, साधु 103, साध्वी 39, ट्रांसजेंडर 1 और सुरक्षा कर्मचारी 176। ऐसा कुल मिलाकर 2 बजे तक, आज दोपहर 2 बजे तक 17,908 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें।

0: श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग। श्रोता, आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब ने जो है कहा है अपनी कॉन्फ्रेंस में कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के पिछले 4 संस्करणों को बहुत ही पास से उन्होंने देखा और इस बार तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी जो है देखी जा रही है और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग जो है बिना पहले से रजिस्ट्रेशन कराए भी आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने मिलकर पहले से भी जो है बेहतर व्यवस्थाएं और सुविधाएं रखी हैं तीर्थयात्रियों के लिए, और सभी तीर्थयात्रियों से ये निवेदन भी है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं कराई है कि वो पहले अपनी रजिस्ट्रेशन, अपना पंजीकरण कराएं और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करें, अपनी उसकी प्रतीक्षा करें। और यहाँ पर यह भी उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल से 100 बेड्स वाले हॉस्पिटल्स भी चल रहे हैं, जहां पर रिपोर्ट्स के अनुसार तकरीबन 2500 जो है पेशेंट्स ओपीडी में रोज़ाना जो है आते हैं।
1: जी सायका, यहाँ पे मैं एक और अपडेट अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूँगी कि इस वर्ष भी कई स्थानों पर टेंट एकोमोडेशन की व्यवस्था की गई है। कुछ स्थानों पर डॉर्मेंट्री और अन्य आवास सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है वे आधिकारिक माध्यमों से ही बुकिंग करें और किसी भी अनतिरिक्त व्यक्ति या दलाल के झांसे में ना आए। यात्रा के दौरान कहीं श्रद्धालु पोनी, पालकी और पिथु सेवा का भी उपयोग करते हैं। वृद्ध, दिव्यांगन और शारीरिक रूप से कमजोर यात्रियों के लिए ये सुविधाएं काफी उपयोगी साबित होती हैं। इन सेवाओं का उपयोग करते समय ये सुनिश्चित करें कि सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति जो है या ऑपरेटर प्रशासन के साथ पंजीकृत हो। इससे सुरक्षा भी बनी रहती है और किसी प्रकार की असुविधा से भी बचा जा सकता है।
0: जी जैन जी, आपने बहुत सही कहा। और साथ ही साथ जो है हम यहाँ पे अपने श्रोताओं को ये भी बताते चले कि कुल मिलाकर अगर 3 बजे तक की रिपोर्ट्स जो है वो हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करें कि कुल मिलाकर जो है 2067 तीर्थयात्रियों ने आज 3 बजे तक बाबा भोले के दर्शन किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 15,287, महिलाएं 4,123, बालक 307, साधु 115, साध्वी 43 और ट्रांसजेंडर 1 और सुरक्षा कर्मी इनमें 191 शामिल हैं, जो कुल मिलाकर हमारी संख्या जो है बन जाती है आज 3 बजे तक 20,067, जिन्होंने आज जो है बाबा भोले आज तक जो है बाबा भोले के दर्शन किए हैं।
2: पे आ रहे सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के रास्ते में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे तक जा सकता है, इसीलिए अपने साथ वूलन कपड़े लेकर चलें। सफर के दौरान बारिश के आसार भी होते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला, रेनकोट, विंड शीटर और वाटरप्रूफ शूज भी साथ रखना जरूरी है। याद रहे कि अपना आईडी कार्ड, यात्री परमिट और इमरजेंसी पर्पस के लिए एक नोट साथ रखें।

जिसमें आपके सफर की तारीख पे ही जाने वाले किसी और यात्री का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग डीटीएच की आराधना सर्विस एवं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल पर भी हम उपस्थित रहते हैं और साथ ही साथ जो है हम अन्य चैनल्स पर आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो श्रोताओ आपके साथ साझा करना चाहेंगे एक अपडेट यात्रा के हवाले से। जी हाँ, आज 4 बजे तक 22,103 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन पाए हैं। संख्या की बात करें पुरुषों की संख्या रही है 16,837, महिलाएं 4,553, बालक 327, साधु 125, साध्वी 49, ट्रांसजेंडर 1 और सुरक्षा कर्मचारी 211। तो कुल मिलाकर संख्या बनी है 4 बजे तक जो है 12,103 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन किए हैं।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, DTH की आराधना सर्विस एवं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं। और आपको बता दें कि हम ऐसे ही बहुत सारे चैनल्स पे आपके साथ उपलब्ध रहते हैं। साथ ही साथ हम बता देंगे आपको DTH पर भी आप हमें सुन रहे हैं और वीवस OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें इस वर्ष मौसम और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा से जुड़ी कुछ नियमों में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं, इसलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान देने के बजाय केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। श्रोताओं, यात्रा के दौरान अनुशासन का भी उतना ही महत्व है जितना श्रद्धा का। अपने निर्धारित रूट का ही पालन करें। सुरक्षा बलों और प्रशासन के निर्देशों को गंभीरता से माने। अनावश्यक भीड़ न लगाएं। फोटोग्राफी या वीडियो बनाते समय दूसरे यात्रियों और सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रकृति का सम्मान करें। ये हिमालय हमारी धरोहर है। प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, कचरा इधर उधर ना फेंके। जो पवित्रता हम बाबा बर्फानी के दरबार में देखने आते हैं, उस पवित्रता को बनाए रखना भी हम सब की सांझी जिम्मेदारी है। कहते हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा में हर कदम एक परीक्षा है, लेकिन हर कदम एक प्रेरणा भी है। ये हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन रास्ते भी आस्था और संकल्प के साथ तय किए जा सकते हैं। और जब मंजिल बाबा बर्फानी का दरबार हो, तो हर मुश्किल भी प्रसाद समान लगती है।

श्रोताओं बने हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी 2026 के साथ, जो आप आकाशवाणी के एफएम बालतर और एफएम पहलगाम से समाप्त कर रहे हैं। एक अपडेट आप सब के लिए, जी हाँ, 4 बजे तक हमारे पास अपडेट आया है। 4 बजे तक जो है 24,133 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन पाए हैं। पुरुषों की संख्या रही है 18,402, महिलाएं 4,953, बालक 352, साधु 140, साध्वी 52, ट्रांसजेंडर 1, सुरक्षा कर्मचारी 233। कुल मिलाकर संख्या बनती है जो आज 4 बजे तक रही है बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन जिन्होंने पाए हैं, संख्या रही है 24,133। तो हमारी यही मनोकामना है, सारे जो हैं ये बाबा के भक्त जो है, तीर्थ यात्री जो है, बाबा भोलेनाथ की कृपा उन सब पर बनी रहे।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। एक अपडेट आपके साथ

साझा करना चाहेंगे। अभी 5 बजे तक जो है, आज दिन की बात करें तो 5 बजे तक 7,528 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाकर दुमेल गेट पार कर लिया है। जी हाँ, 7,528 तीर्थ यात्रियों ने दुमेल गेट पार कर लिया 5 बजे तक। संख्या की बात करें, पुरुष संख्या 6,320, महिलाएं 1,030, बालक 35, साधु 15, साध्वी 13 और सुरक्षा कर्मचारी 115। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, दुमेल गेट क्रॉस किया है अभी 5 बजे तक 7,528 तीर्थ यात्रियों ने, जिन्होंने बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाए हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें।

श्रोताओं, हमने बेस कैंप में आरती रिकॉर्ड की है, आइए आरती का आनंद लेते हैं।

Yeah.

0: भरने भरने गारना जब कंजी लो चली रंगे मुझसे अंजी पजी
1: Thank you.

रखता, सर्वजी के रूप निरखता, त्रिभुवन जन्मो

कालिक ब्रह्मालिक सन कालिक ब्रह्मालिक भू

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम सीता लक्ष्मण व भक्तगण स्नान ध्यान पूजन भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजा कर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं।

देह हरिद्वार तुलसी भीतर बाहरिउ जो चाहसि उजियार। श्रोताओ, मैं अकिंचन तुलसीदास अपने मुख रूपी द्वार की देहली पर राम नाम का मणिदीप रखकर आपके सामने आया हूं। सो क्यों? इसलिए कि इस अनुपम दीपक ने मेरे भीतर और बाहर जो उजाला कर दिया है, उस उजाले में मैं एक अलौकिक दृश्य देख रहा हूं। एक विशाल मानस, ऐसा सरोवर जिसमें मधुर मनोहर मंगलकारी यश का निर्मल और अथाह जल फैला है। किसका है ये यश? एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। बात ऐसी हुई कि मुनियों ऋषियों और महाकवियों द्वारा वर्णित इस कथा को मैंने अपने गुरु के मुख से सूकर क्षेत्र नामक तीर्थ में सुना था, किंतु समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे हूं अचेत। मेरे गुरु ने कृपा करके बार बार मुझे कथा सुनाई और ज्यों ज्यों मेरी छोटी मति में थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, त्यों त्यों मेरे मन में उजाला सा फैलने लगा। मन में ये संतोष उपजा कि उस लीला को मैं भाषाबद्ध कर पाऊंगा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजुन मानि है जिन्ह कहें विमल विचार। हे श्रोताओ, आज संवत 1631 मधुमास चैत्र की नवमी तिथि भौमवार है। आज इसी दिन सादर शिवजी को सिर नवाकर श्री हरि के चरणों में शीश रखकर मैं राम की गुणगाथा का आरंभ कर रहा हूं। शुक्ल पक्ष के अभिजित नक्षत्र की इस तिथि का दोपहर का समय ही समग्र चर अचर जड़ और चेतन प्राणियों को हर्षित करने वाली, जन जन के सुख की मूल, सभी लोगों को विश्राम देने वाली पावन राम जन्म तिथि है। भगवान ने जन्म क्यों लिया, सुनिए। दुष्टों के अत्याचार से पीड़ित दीनहीन गाय के रूप में धरती की रुदनपूर्ण विनती सुनकर ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवगण भगवान की स्तुति करने लगे।

0: जासु बचन रवि कर निकर।
1: राम नाम मणि दीप धरु,

0: श्रोताओं, भूमि और सुरगणों को दुखी हुआ जान, शोक संदेह को हरने वाली अंतरिक्ष की निस्सीम गुफाओं को मानो गुंजायमान करती हुई गंभीर गगन गिरा सुनाई पड़ी।
1: जनी डर पहुं मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरी हूं नर बेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर बंस उदारा। हरि हूं सकल भूमि करु आई, निर्भय हो देव समुदाय।
0: श्रोताओ, चलिए अयोध्या नगरी। रघुकुल मणि, धर्म धुरंधर, गुण निधि, ज्ञानी, हृदय में सारंग धारण करने वाले, भगवान की भक्ति में लीन महाराजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ देखिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।

0: अंतिम आहुति देता हूँ। इसके बाद एकाग्र चित ध्यान लीन होकर किसी स्थान पर बैठे
1: रहें।
2: गुरुदेव, क्या कौशल्या को यहाँ नहीं बुलाया जा सकता?
3: क्यों राजन?
2: इसलिए कि एकाग्रचित होते होते मुझे लगता है कि मैं और कौशल्या हम नहीं हैं, कोई और दंपति है। और युगों पूर्व कल्प कल्पांत से पहले कहीं दूर घने जंगल में घोर तपस्या कर रहे हैं।
0: शांत राजन, नेत्र मूंदिए, यज्ञ पुरुष अग्निदेव का ध्यान कीजिए।
2: हाँ, कर रहा हूँ मुनिश्रेष्ठ। आंखें मूंदते ही गुरुवर वहीं ध्यान चला जाता है। यही विधि बीते बरस खट सहस नीर आहार संवत सप्त सहस पुनी रहे समीर आधार।
3: ये तो शुभ लक्षण है राजन। युगों पहले की कोई तपस्या की स्मृति का उमड़ना शुभ लक्षण है।
2: लेकिन कौशल्या,
3: बुलाइएगा लेकिन अभी नहीं।
0: अब मैं समग्र समझा की ये आहुति अग्निदेव को समर्पित करता हूं।

0: आंखें खोलिए राजन, प्रगट अग्नि चरु कर लीने।
1: तो राजन, वशिष्ठ मुनि के वचन, श्रृंग ऋषि की मंत्र साधना और तुम्हारी भक्ति भावपूर्ण याचना पूरी होंगी। यह लो, यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई।
2: मैं क्या कहूं भगवान, परमानंद में मगन हूं और हरस में हृदय समाए। आपकी असीम अनुकंपा के लिए दंडवत करता हूं। आपके दिव्य दर्शन से मैं, अरे
0: अग्निदेव तो अदृश्य हो गए राजन, आपकी मंगल विधि संपूर्ण हुई। वशिष्ठ मुनि, मैं आपकी अतिथिशाला जाकर वहां विश्राम करूंगा।
3: अब बुलाइए महारानी कौशल्या को राजन।
2: प्रतिहारी, पटरानी को सादर यहां ले आओ।
4: जो आज्ञा।
3: अग्नि देवता के दिए हुए इस चरु में जो पायस है उसका आधा भाग इस स्वर्ण पात्र में अपने ही हाथों डाले राजन।
2: जो आज्ञा।
5: आर्य पुत्र, आपने मुझे ही बुलाया, किंतु कैकेयी और सुमित्रा भी तो वातायन के उस ओर पहुंचाने का आदेश दें।
2: ठहरो कौशल्या, बैठो। सुनो, जब श्रृंगी ऋषि द्वारा अंतिम आहुति देते समय मैं उनके आदेशानुसार आंख मूंद कर ध्यान मग्न होने लगा तो मुझे जान पड़ा कि युग युगों पहले किसी बीहड़ जंगल में तुम और मैं न जाने कैसी अंतहीन तपस्या में लीन बैठे हैं।
5: हाँ, हाँ आर्य पुत्र, आंखें मूंदते ही वो दृश्य इस क्षण मेरे भी सामने स्पष्ट होता जा रहा है। और फिर हम दोनों की तपस्या के बाद मांगू मांगू बरु भय नब पानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी।
2: तब हम दोनों ने कहा, जो अनाथ हित हम पर नेहू, तो प्रसन्न हो ये बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि
5: जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा, देख ही हम सो रूप परिलोचन, कृपा करो परतारित मोचन।
2: क्या अलौकिक रूप था वो, उन चरणों की शोभा, पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधु बस ही जिन माही।
3: हे राजा।

0: आप दोनों उस जन्म में मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा थे। आज आप दोनों के उस महातप और भगवान के वरदान के फलस्वरूप।
1: वरदान? ओह, हमने कहा एक लालसा बड़ूर माही, सुगम अगम कहीं जात सुनाई।
2: तुम्हारी देत अति सुगम गुसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई।
1: तानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सद्भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव।
0: और वो वर मिला, लेकिन वो रूप भूल जाइए महाराज, भूल जाइए आप। अब
2: कैसे भूल जाएं गुरुवर, भगवान ने स्वयं कहा था, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटही अनुग्रह मोरे।
0: देवी, भगवान स्वयं भुला देंगे और अवसर पड़ने पर स्वयं याद दिला देंगे, यही तो भगवान की लीला होने जा रही है। देवी, अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त इस पायस खीर का आधा भाग अपने पति से सादर ग्रहण करें। उठाइए ये स्वर्ण पात्र, राजन डालिए चरु में से पायस, धीरे धीरे। हाँ, बस बस, प्रतिहारी देवी कैकेयी और सुमित्रा को बुलाओ। आइए देवी कैकेयी और आइए देवी सुमित्रा, इधर बैठे। देवी कैकेयी, चरु में से आधा भाग लीजिए, राजन अब शेष पायस को देवी सुमित्रा के स्वर्ण पात्र में डालिए। देवियों, इस दैवी प्रसाद को अब आप अंतपुर में अपने अपने कक्ष में जाकर प्रसन्न वदन होकर पान करें।
3: यही विध गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, मंदिर में सब राजे ही रानी, शोभा सील तेज की खानी। और जब चैत्र मास नवमी तिथि भोमवार को भगवान का जन्म हुआ, तब समस्त देवताओं के समूह को लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे, गंधर्वों का गान हुआ, सुमनांजलियों से विमल गगन छा गया, और उसके बाद

व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो आज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद। कैकेयी के भरत शत्रुघ्न और सुमित्रा के लक्ष्मण के जन्म होने के उपरांत चारों भाइयों की शिशु लीला मैं अकिंचन दासानुदास तुलसीदास भला कैसे करूं उस बाल लीला का वर्णन। बस सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। नामकरण हुआ चूड़ा कर्म संस्कार उपनयन और गुरु से शिक्षा। श्रोताओं

0: चरित मैंने गाया। अब मन लगाकर आगे का प्रसंग सुनिए। राजा दशरथ का दरबार, अवध नरेश, मुनि वशिष्ठ, चारों भाई और अन्य लोग।
1: महाराज, शुभ विपिन के अपने आश्रम में बसकर ज्ञान मनन तप करने वाले गाध तनय मुनिवर विश्वामित्र जी पधारे हैं।
2: हमारे धन्य भाग्य, सब उठकर उनका स्वागत करें।
3: बैठिए अवध नरेश, बैठिए मुनि वशिष्ठ। वास्तव में एक ही मनोरथ है मेरा राजन, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना।
2: ये आप किसकी बात कर रहे हैं मुनिवर? मेरा दंडवत स्वीकार करें।
3: आप नहीं समझेंगे राजन इस रहस्य को, पर मेरे बंधु वशिष्ठ समझ गए होंगे।
2: अस्तु। ये मेरे चार बेटे हैं मुनिवर। राम, चरण वंदन करो मुनिवर विश्वामित्र के। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मोह समाज धन्य नहीं दूजा। मुनि, अस कृपा ने की ने उकाऊ, केही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लावु वारा।
3: असुर समूह सतावहि मोहि, मैं चाचन आयो इंद्रप तोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसिचर बध मैं होब सनाथा। देहु भूप मन हरहित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को, इनक अति कल्याण।
4: राजन, यूं सहसा आपका मुंह खो जाना उचित नहीं। आप रघुवंशी राजाधिराज हैं, ये ठीक नहीं कि आपका हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। उत्तर नहीं महाराज।
2: गुरुदेव, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे हो विचारी। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरे अतिथि हैं और उस पर भी विप्र। मांगे हु भूमि धेनु धन कोषा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिख एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बन ही गुसाई। और फिर ये भी तो सोचिए, कहने से चरती घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा।
3: वशिष्ठ जी, आप ही अवध नरेश को आश्वासन दें।
4: राजन, पिता के मोह को अलंकार समझिए, कवच नहीं। आप क्षत्रिय हैं और आपका कर्तव्य है कि मुनियों के आश्रमों पर असुरों का जो अत्याचार हो रहा है उसे बंद करने के लिए सबसे समर्थ उपाय कीजिए। राम आपकी दृष्टि में हमेशा शिशु ही रहेंगे, ये मैं समझता हूं। किंतु राम पुरुष सिंह हैं, वीर हैं, धीरमति हैं, मैं उनका गुरु ये जानता हूं। और आप राम के पिता नहीं, आप अवध नरेश, आप भी सत्य से अपरिचित नहीं। इसलिए संदेह का नाश कीजिए। कौन जाने राम के इस अभियान के पीछे कोई ऐसा मंगल मुहूर्त, कोई ऐसी कल्याणकारी घड़ी बाट जोहती हो जिसका आपको अभी तनिक भी आभास नहीं है। इसलिए भूपवर, बहुविधेयी आशीष, आप उन्हें ऋषिवर को निशंक सौंप दीजिए।
2: आपका कहना ठीक है। राम, लक्ष्मण, आगे आओ। तुम क्षत्रिय पुत्र हो, भुजबल और आत्मबल दोनों की महिमा का ज्ञान गुरु वशिष्ठ से पा चुके हो। समझ लो कि अब तक प्राप्त शिक्षा का अभ्यास करने और शेष शिक्षा प्राप्त करने तुम मुनि श्रेष्ठ के साथ जा रहे हो। पर इधर इधर मेरे निकट आओ, तुम्हें हृदय से तो लगा लूं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं कहूं।

0: अपनी जननी से विदा लेने अंदर चलो।
1: आओ। वशिष्ठ जी, मैंने तो महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजऊ भगवाना।

श्रद्धालु श्रोताओं, यों श्याम गौर सुंदर दो भाई राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले। बीहड़ घना जंगल, रास्ते में मुनि को दीखी राक्षसी ताड़का। सुनी ताड़का क्रोध भरी धाई, श्री रामचंद्र ने धनुष खेचा। देखने में भयानक ताड़का, क्या वास्तव में राम की वैरी थी जिससे वे युद्ध करते? नहीं, देखिए एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान ते ही निज पद दीना। उसके बाद विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचकर प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। मुनि वृंद होम करने लगे और राम लक्ष्मण रखवाली। मंत्रोच्चार की ध्वनि कानों में पड़ते ही निशाचर मारीच और सुबाहु अपनी राक्षसी सेना लेकर दौड़ पड़े। देखते ही देखते मारीच पर तो राम ने बिना लोहे के फल वाले बाण से ही ऐसा प्रचंड आघात किया कि वो सत योजन जा सागर पारा। भीषण युद्ध होने लगा। राक्षस सुबाहु और उसकी सेना क्रोधावेश में उन्मत्त लहरों सी उमड़ पड़ी। तब राम ने अग्निबाण संधाना, पावक सर सुबाहु पुनि मारा और लक्ष्मण अकेले ही असुर सेना पर बरस पड़े। अनुज निशाचर कटक संहारा। आश्रम में निर्भय शांत निर्द्वंद्व यज्ञ कार्य चलने लगे। राम लक्ष्मण को पुरानी कथाएं सुनाकर उनका मन बहलाने के बहाने उनके प्रति अपनी आंतरिक भक्ति ही से आप्लावित होने लगी। एक दिन मुनि ने कहा दोनों भाइयों से कि पुरानी कथाएं तो आपको अनेक सुनाई, चलिए कुछ वर्तमान चरित्र दिखाऊं। मिथिला में राजा जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग उस नगरी की छटा और धनुष यज्ञ का मनोरंजन देखें। चलिए।

उस आश्रम में पत्थर की एक शिला देखी। विश्वामित्र ने कथा बताई। शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का पत्थर का शरीर है। क्यों? पति का शाप। अहल्या से इंद्र ने अपावन व्यवहार किया। पति ने दोनों को शाप दिया। अहल्या पत्थर बन गई। इंद्र को भयंकर रोग ने ग्रस लिया। राम, ये पत्थर की मूरत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्यों? गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहन कृपा करहु रघुबीर। देखिए और सुनिए ये लौकिक अलौकिक लीला। राम अपने चरणों से शिला को छूते हैं और

0: के बाद गंगा पार करके राम लक्ष्मण मुनि के संग विदेह नगरी पहुंचते हैं। वहां की सभ्यता, वापी, कूप, सुमन वाटिकाएं, चौहट गलियां, चारू बाजार, मंगलमय मंदिर सभी देखे और देखे। धवल धाम मणि पुरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाती। लेकिन ऐसी अद्भुत जनक नगरी की शोभा और उसके सुभग नर नारियों का अवलोकन करने वाले ये दो किशोर बटोही जब सैर करने निकले, सारी नगरी वैभव ऐश्वर्य की भव्यता उन दोनों की दिव्य शोभा को देखकर मानो ठगी सी रह गई। श्रोताओं, धनुष यज्ञ से एक दिन पहले की संध्या, एक पुरातन प्रीति की जो निराली घटना घटी उसे सुने। राजा जनक की वाटिका जहां वसंत ऋतु की छटा फैली है, राम लक्ष्मण शोभा निरखने पहुंचते हैं और महिलाओं से पूछकर फुलवारी में फूल चुन रहे हैं। एक सखी सीता का संग छोड़कर फुलवारी में आ पहुंची। दोनों भाइयों को देखकर प्रेम विवश सीता से जाकर बोली,
1: सखी देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गार के में कहूं बखानी, गिरा अनैन नैन बिनवानी।
2: अरे ये तो वही तो राजकुमार हैं, सुन हर्षी सब सखी से आनी, सी ही अति उत्कंठा जानी, एक कही नृप सुतते आली, सुनिजे मुनि संग आई काली, जिन्हने जो रूप मोहनी डारी, कीने स्वस नगर नर नारी, वर्णत छवि जहां तह सब लोगू, अवसी देख अही देखन जोगू। अरे राजकुमारी तुम चारों तरफ यूं कैसे देख रही हो, चकित बिलो कति सकल दिसे, जाने से सुन रही सभी।
3: इस फुलवारी के सुमन अत्यंत सुहावने हैं, पल्लवों में वसंत की छटा बिकस रही है, मुनिवर को भी भले लगेंगे।
4: सारा बगीचा ही परम रमणीक है। और ये सुना तूने?
3: क्या?
4: कंकन किंकिने नूपुर धुनी।
3: तात।
4: मानह मदन दुंदुभी तीनही, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनही।
3: कौन है ये जिन्हें देख के आपके भय विलोचन चारु अचंचल, मन हूँ सकुची निमित तजे दिगंचल।
4: तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई।
3: पर बात इतनी ही तो नहीं जान पड़ती तात।
4: जासु बिलोक की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा।
3: तात आपकी टकटकी इस तरह लगती तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
4: सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता।
3: समझा समझा, मुझे तो आपका इस तरह ठगे से रह जाना ही बहुत भला लगता है तात।
4: लक्ष्मण मैं असमंजस में हूँ।
3: स्वाभाविक ही है तात।
4: वह बात नहीं, सुनो, रघुबन सिन कर सहज स्वभाव, मनुकुपंथ पगु थरे ही नकाऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपनेहु पर नारी न हेरी।
3: लेकिन भगवान विदेह कुमारी भी तो शोभा की सीमा ही जान पड़ती हैं।
4: पर लक्ष्मण यह मुझे क्या हो रहा है, क्या मैं गुरुओं द्वारा दिखाए पथ से विचलित हो रहा हूँ? वह आदर्श जिनके लहे ही न रिपुरन पीठी, नहीं पावही पर तियमनु डीठी।
3: इस लता गुल में

0: कुछ निराले ही फूल हैं, कुछ इनमें से भी चुने।
1: राजकुमारी तनिक इधर आओ, यहाँ से देखो उस लता की ओट में वो रहे दोनों श्यामल गौर किशोर सुहाए।
2: सखी क्या हमारी राजकुमारी प्रेम बस हो गए हैं? कौन अच्छा की बात है,
1: देखो ना लता मंडप में से दोनों बिल्कुल बाहर आ गए हैं। कैसे अपूर्व छविमान लग रहे हैं दोनों, निक से जनुजुग बिमल बिधु जलत पटल बिल गाई।
2: जनक सुता तो गिरिजा की आराधना करने चली
3: पूजन को विलंब हो रहा है सखी।
1: राजकुमारी बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, बोप किशोर देखी कि न ले हूँ
2: सकुचो मत राजकुमारी।
1: नयन उधर कर देखो ना, सन्मुख आमनी सामनी दो रघु सिंहों का अवलोकन करो।
3: सखियो मुझे मुझे न जाने कैसा लग रहा है।
4: क्या हुआ क्या हुआ राजकुमारी,
1: चित्त तो ठीक है ना?
4: कैसी बात पूछती है तू?
3: चित्त में आह्लाद भी है और क्षोभ भी सखी।
4: क्षोभ क्यों?
3: सुमेर पिता पनु मन अति क्षोभा। और क्या कहूँ सखी?
4: सखियो राजकुमारी को जो परबस देखकर मुझे भय लगता है, इन्हें अब ले चलना चाहिए।

0: मधुर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के।
1: सुनु सिए सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनु राचा। मनु जाहि राचेउ मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सावरु। करुणा निधान सुजान सीर, सनेहु जानत रावरु।

युग पुरुष संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, हम एक से ही अनेक हुए हैं और फिर एक ही हो जाएंगे। और जब हम सभी उस एक परमात्मा को जान लेंगे, तब हम सब भी उस एक में ही मिल जाएंगे।

और इस संसार सागर से तारने वाले सिर्फ एक है, सद्गुरु साहिब। जो ये सत्य जान जाते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं।

साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। एक माता एक पिता

मन मक्का दिल द्वारी का काया काशी जान दस द्वारे का देहरा तामे ज्योति पिछान ईश्वर अंश जीव अविनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

किंते मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई, साधक साधे साध न पावे बीते जीवन सारा।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

सज्जन दे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी सज्जन दे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी ओ जान भी दे हुण सोहणी।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दें। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।